तुरेल नंग सिंसांगी नापोम दगी सिंगजुम लाइजक हेबिक पुदुना उमंग वामंग फाउना तंपाक लमदमदा नदोम लेपतना थेकना खोइना असुम सेंथरकपदा पुरकलिबो वारी सिंगसे लोइनाइदबनी सिंगमाइद पामयाल होबी लैसा पाखंग सिंगी थमोयगी वारी सिंगी खोंथांगसु लोइनरकली केन ओइनजबगी पामुबी मकाद लग्न निंगबगी साक योम हंगतोकतुना पुन्न सामिन निंगबगी वारी कया कया नुंसी मसू लांगी चिंगी नुजा महाकना पाखंग माइकै तबु येंगजना खुनिंग कांग न कांग येंगजबा नुंसीबगी वारी सिंबुल ngakतनी तंपाक लमद योरकलबदा नदोम कंगाउ नरब तुरेल नहाकु कनागी मफमदा तमथोकलसिगे खनबरा अदुबु ngam namakhangle nahakna purakpa senglaba chingsang paringi nungsi wari singdi.

ताबीरे तोनाम संदेश तकी वायोलिन आकाशवाणी इम्फाल हौजी अयुक पुंग निपाल तार पगल लोनना मिकुप खर की समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज अमदी सिलोंग दगी रिलेदा अवांग नोंपोक लमदोंगी पाउसिंग मथंग मथंग ताबा फंगबीरगनी मिकुप खर दंगाई मिनसी।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग

0: करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
5: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने

0: कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा

लैसी लगत लोलिबी सर ऋतु था जदा करी पाखोनु सलिबा कुदोल गहन बदता विख्रे मालेम गानबा युमनाम नसप मतमिसे सेरेंग बयन सेम्बम कुंज बिहारी नोमाइजिन मिटकि युमद पोथा पोथा नि सेताबिरि बसिं इसेतान तान थाबक दबिरि बसिं लेप्तन ताबियु उंगाइन पोथाबियु मथंग द लोकचरी हुइद्रोम नवइन सप मणिपुरी मतमिसेमा सेरेंगबा एकेंद्र तेंछुबा

0: हेलो,
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग कनावे बिरबनो।
1: तो
0: इबो सब बो तराम लोग सरी करम फिल्म इसे ही ताबी का दोरी बनो है भी इबो सब बा होय होय यानी यानी हमने फजबे इसे ये मुखन भी रख ली सनातो नोंगथोमोंगी मैं एक तक
1: हाँ
0: सॉरी
1: जो
0: से
1: हाँ
0: जमना से रंग भी से निखन भी रख ली उसे ममांग दसू लाइब फब हाई बता रहे हवा में इबो सब सी
1: हाँ
0: फोन इन
1: हाँ
0: प्रोग्राम की आहान बता है ता फंग भी को
1: हाँ
0: हो जी से कई तो बिरा मुने इबो सब बो
1: हाँ तो आपने निंजिला फोन इन प्रोग्राम आया मिनी सर
0: अदो मैं एक सेंग ना तुम ताबी बिरा मैं के दोम दा
1: और तादर ये सर
0: होय होय अदो दी यामने नुंगाई जरे अंगसी हवाई बम इबो चौबना कॉल चौबीर तुना सरु याबीबा इसाई खुदोल तम जरा लगे अदो पुन्ना तामी
1: हाँ
0: नरसे
1: हाँ सर

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड
0: गुड
1: मॉर्निंग
0: मॉर्निंग।
1: सर।
0: मैं एक सिंग ना ताबी ब्रा
1: ओ ताजे सर।
0: हो याम नुंगाई जरे ममांग दा राम गो वारी सानबा मतम दा खरा पिक ना ता खिबगी एकोई सि खंजा ने रम बनि मैं एक सिंग ता बदे नुंगाई जरे करम बा फिल्म से खनबी गने हाबी यु मिंग ले फम जु पन बिरमो
1: सर इनाउ स कंगु सो मेंग थानदेगी
0: मैं फाल देगी इनाउ साबु तराम ओक्सेरी करम बा खोइदा बिबे इसे ले बिबे गे हाबी
1: सर सगे सरी फॉलो पिरो कोन सर डॉक्टर याई मैं फिल्म देखि ने
0: हाबी हाबी
1: ꯍꯩ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯩꯗꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯒ ꯁꯩꯇꯥꯒ ꯃꯤꯅ ꯁꯛꯄꯗꯣ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯕ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯒ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯁꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ?
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯦꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯁꯤ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯌꯥꯎꯖꯩ ꯍꯦ ꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨꯃꯅꯦ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯀꯣꯏꯔꯨꯁꯤ ꯂꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝꯂꯒꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯀꯛꯅꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯗ꯭ꯔꯦ
1: ꯑꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯕꯨꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ.ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯝꯇ ꯉꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ?
1: ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯁꯦ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ
1: ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ
0: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ
1: ꯃꯇꯦꯡ
0: ꯑꯝꯇ ꯉꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯅꯪꯒꯤꯅꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ
1: ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ

0: लेप्टन कोल टो बिरो 9362327095 हजी हजी यूट्यूब लाइव चेता रमानंद अंगोम इबीआई मा अपे मा बोगे लाइसम समीरेंद्र बमसा इनाउ सबु तराम उपसेरी मतन जी फोन कॉल में लखो चली हेलो गुड मॉर्निंग
1: गुड मॉर्निंग सर इसे इन द तजे
0: यानी यानी अदम उतराम उपसेरी कना ओबिर बनो
1: सर फोन तो बिरा जई बोगे लाइसम तो जो
0: बोगे लाइसम उतराम उपसेरी बोगे के लेबम सो हबिर म मयाम खंबी नबा
1: सर थोंजु वाइबो
0: थोंजु दगी बोगे लाइसम उतराम उपसेरी सोम न सोरोय बा कलर ओबिगे दरबनी कर्म फिल्म इसे तबिगन
1: आज के खला अभी बा कोई लमजा पसा फिल्म दा कोंदा फम जे को मान सका इमागी ममो इनो काजनी बा अदु लेबिगे सा
0: मधु मदि एको कासपानी गी कासपानी इंफाल दा मधु मदि खोइने अप्रूव तौ तबि से ओइरे अतो पे से वेन खन बि ओ
1: सा तो मचा फिल्म दा कोई वेन सामने दा पा कना गी वो खन दा एन तो बो दो दाजनी
0: होय होय हरि बि से दो नसी गी फोनिंग प्रोग्राम की अरोबा वेने कोई तामी नरसी अदो इसा की खोंजेल दा ममांग दा नंबी की बाद माने मतियम तंग बिरम
1: ओ सा जाम नि सांग मतियम तंग छजेगे
0: होय होय
2: हेलो

0: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: थरम सिंह संदुक्तु न तहंजरी बसे आकाशवाणी इंफाल के एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक चैनल असिगी मखा तारक पनुंगाइरब थरम सिंह अमुक अखुगे नाउंसर हुइनिंग सुंगबम देवदत्त अमुक खुसिनजरी
4: थागचरी निरुपमा

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो लेदिस्ता
1: हेलो
0: तराम नोकचेरी कनानो तकपियू
1: हाँ मीना में
0: पुरखम इनाबू तराम नोकचेरी ngasi gi nomai jing nimit oibani na nimit yung mai gi mamang da pangtok cha ba hello ladies kerika mo wafam takpi ni takpi thamoi da phorok ba haining bu dekta haibi yung ngasi nomai jing nimit ni nupi me gi thokdang da bu haibi ra su ya de yai khoi pun na khangmi na bada nungai ga da ba haije ba ta ngasi di sei khan ba di na cha da ba sei khan ba na khoi na good morning adegi good evening adegi good afternoon ladies ta ju ning thau ka ba nu mi ta bu di ta bi ning ba film sei khan ba gi khudong cha ba di lai ja ba ngasi na sum akhoi pumen paung mi na ja ba hai ja ba ta re ko akhoi gi nupi sing na dum theng da rak pa pun si da adegi lu ba nan ba gi matang da bu oi su nupi bi sing na lo ri ba thau dang adum ak pan bi ram ba yai फोन से अहम फंग भी ओर फोन फोन फंगदनो खादबू फोन ओक्चरीब अखोद लांतब है तारे कहींगे हे फोदनीब कहीं मथेल चाबीरगेबो अहब मथेल नों सिंह की फीवम जो हुई कई दौगे जे खित मफम खरद नों सिंह चूब की अखोई इंगा इंगादे हंदक्ति था अनीसु इंगा पानगदोरिमनी इंगा इंगेनसिद नों चूहोरगा लबुकता अखोई सुजरीब लोमी सिंह की दमक्तदि नों सिन थवाईनी हाइजब तारे को फोन से अदुम अखोय मरी मता इचि नाउ इमुंग मनुंग वरी सानबो गुमन दुम सानर लोरे दा दुनि निथों कोंग माइके हुजि अदुम इसिं खरग नोंग खरग ताई हेबने दुन नोंग सिजु का हेन चुरो सु मु लमदम सिद इरम नला गि कितंग खुदोंग चा दब लेब नि नेक ता इसिं जे थुमजे लक पि फिबम लेग दुरि बदुना चांग मदा चुबीबा लबुक सिंग द काना गदो बदुगा थुम द बिमोंग द चुबीबा हैना खोइना हाइजब तारे हा याम नुंगाइजे फोन तो विरक लगा हाइगद वफम दी फोंदो पिद्र सुंग हाक वरि सानबगी तंजा पिबीबा थागत चली मथंग दबु कनाने करी फोंदो पिरक पा पुन खमिनेसी थागत चली

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग। हेलो लेडीज़ ता तराम नोक चरी खोंजेल से याम इतत तत्तन ताबो खोंजेल अमगुम वोइन तोक जाई कना।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग. हेलो लेदिस्ता तराम नुकचरी कना ओबी रबना
1: याम देगी मेमा।
0: कियाम देगी मेमबू तराम नुकचरी नसी. हेलो लेदिस्ता करी करम वफम ताकपी गनी तामी नसी पुन्ना.
1: मोबाइल से ये मरी लाइन दे काय ना ये कदरा दिखंग रे बको तेनो कुगी सुस्मिता हो ये देगी पिसमरानी हो सुमा हो चे मुझे अदुम पुरों दो ने मुझे उन्हें वसिया द बरो ये दूधा
0: ओके. सोमन ताक पीरी से सोमन पन पीरी बस ऐसे कुछ सिंग से आकाशवाणी इंफाल की कुतांग दा उन्हें हनिंग बिगा पाम बदरा.
1: उन्ना भैया हुई तो ना को
0: वरी सासी सही तासी दसु एक ना लंदन में सिगी सकना रबा सही सकपा आर्टिस्ट सिंग उन्हें जदुना मैं अंदा आर्टिस्ट अदुगी पुंछी वारी अमद इसे सुतामी ने बंद अदु न ट्रगस अतोपा तोंगान तोंगान बा आकाशवाणी इम्फाल की थोरम सिंग दा उनजरी सोमना पनबीख्री बा आर्टिस्ट सिंग अदुसु मतम की मतुंग इना नोंग मत नत्रग नोंग मुदि सोइदना एकोगी आकाशवाणी इम्फाल की थांग दा वरी शासी सेता सिबु वरसु नत्रग तोपा थोरम सिंग दा सोइदना मकी उनरकनी हाय बसे थमजेगे. अना निजबदा करूम लाद्रगदी समझे चाबम सोनिया सोमना सोनिया मचा हाईबीसी इंग्लिश टोकता इंग्राजी वारी वताईद उन खरब्रा ऐसे सब चाने लाक्षण गमद्रे तोान तोब थोरम कयामनी हेक ताहुदब तंजासु दुमुक यौदब नते ngaiba kalaga फमें फमी खांग कल फमें फमी ngaiba kalaga फागी होने केंद्र फंगी का हाइनबदुनी ngaimi nasi नोम नत्रग नोम दि सोइदना सोमना पनबीरी बामदी मणिपुर लेरीबा तोंगान तोंगान बा हिरम सिंगदा सखनायरबा आर्टिस्ट खक्त नतना सानरोई सिंग अदिगे अईबा फाओबा साइंटिस्ट.

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग। हेलो लेदिस्ता तराम नुकचरी करी लमदेगी कना
1: ओ सर
0: उबिरबनो।
1: कैनोने खोहाम पाट मंत्री क्या देगी उसम उतरा
0: खोंगा पातगी उषम उतराबू तराम नुकचरी मनाक अंगा कप्प मान बो खोन म ताजे की आइबू कना
1: ओ
0: उबिरबनो।
1: इचानो पाले ही अदो एने सुन सर होइदा कै गुमन दों सुन थाका तनिंग बगी नि कोइ ना हाइजे दो सेंग सि
0: तक पियो
1: आदि ओन इंडिया जो

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग। हेलो लेडीज, तो तरह नोक चरी हो जी अखोई स्टडी हो गरी दा पुंग तरह मत होगा मिनी यंखई हम दोई सेकेंड यंखई नी पाँच
1: वारी दी आप थम जाए रोगे सर।
0: तक पियो तक
1: आई
0: पियो।
1: ना तो जे खंजा में आप कोई रहा
0: मिंग नहीं फॉर्म हाना तक पियो देना
1: आई खुराई देगी शांति।
0: खुराई देगी शांति। तरह नोक चरी अखोई मिनी अहुम मुक्ति ले चरी मिनी अनी मुक्ति तक पियो करी क्रम हो नो।
1: मतलब याम ले जेदरा मिले सर। आई ये सर ना पाई भी रहा पच्ची मुंग नाई जब ले जेदरे अदम थम जा रहे सर।
0: सुमाने
1: मतलब
0: हायर
1: जानी
0: मग
1: चौक जा रहा है।
0: सुमाने हायर मग थंगर ग जुम थंग की फोन तो रोक दुई दमु मतम से हम फंगोय दुई बा अद सोंग ग जुम वारी साने रगा हेलो लेजिस लोशन नबी पुंखम दुई और ग सु फोन लख चरी बा थोरम ना थोक चरी बा खोय दु जुम नुंगाइ जद ग नुंगाइ जग दोरी बा न ट्रगे दि फोन जुम फंगनी फंगो जु खंग जद बा दो नहाक तंग वारी सान जगी चिन नसी चिबु करी मथेल
1: या ये सा नबो पा या बिया ग दि आइ गि दि एकदम
0: करी मथेल चाबी ख्रगे नसी चिबु
1: ང ཚོས ཡི དེ ཡ་ ཀན་ོ་ དེ་ ཨེ་ བཟར་ དེ་ ཞུལ་ ལེ་ཅ་ བ་ནི་ ན་ ཕ་ཏེན་ གི་ མ་ཆེ་ ཧ་བོ་ མ་ ཡ་མ་ མ་ཟ་ དེ་ རེ་ས་
0: बाजार है सी कराबाई की बाजार के थेल ओबी गदोरी बनो
1: ཆི་ ཀན་ོ་ ཡ་ ཕ་གི་ ཉི་མ་ ག་ ཐེན་ གི་ ཏེམ་པ་རི་ མ་ཆེ་ གི་ དེ་ ཆི་ དེ་ ལེ་ཅ་ བ་རེ་ས་
0: ཨ་སདུ་དི ཧ་བོ་ མ་ ཐེལ ཁོ་གི་ ཨིམ་ག་ ཀེ ཐེལ མ་ནུང་ དེ་ ཆ་ཧིམ་ གི་ མ་ནུང་ དེ་ ཨམུག་ཏང་ དི་ ཆག་ ཆ་བི་ ཡུ ཨིམ་ག་ གི་ནི་ ཀེ ཐེལ ལ་རན་ བི་ན་ ཐོ་ཟལ་ བི་ ཕུན་ཅི་ ཧ་པི་ ཧ་བི་ དུ་ནི་ དེ་ ཨ་དོ་ན་ ཀེ ཐེལ དེ་ ཕམ་བི་ རེ་ བ་ ཨིམ་ག་ བེལ་ སིན་ ཕུན་ཅི་ ནུང་ ས་ང་ ལེ་ཧིན་ གི་ཅེ कैथेलेन बिगी थौजाल नि हाइजे बतारे खु सुनुंग फादो कोइ थोरा गा दुमक साबे यावजे याम सु हावी को आ अतो अतो अतो करी करी मथेलो गा ताव ग दुम यावी रम दोंग माले ग सिजे
1: याव याव सा
0: गा ताव बा सबरी हवाई इरोम बा
1: हम्म इरोम बा रेगी सिंजुरो अदेगी कांग छोई जो आइलो पार जबरा जबा कांग छोई जो तुम हापी रे
0: हम्म यम नुंगाइजे ngasi se phone phone se phangroidra na pakacha bani du bu phone se hek loiba ga matang matang adumak phange ai marak tei sei phawba thajadra bani tongan tongan ba lamdam degi tongan tongan ba marup sing ima sing ko ma mamna phajara ba phung kya thambirak ba thakar phong dok chari matang inu mito so mu ko thengasi so mu ju thakar phong dok chari
1: yam nuai jere sa
0: thakar chari
1: thakar

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के

0: भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
2: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
4: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा

चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है। दोस्तों, आज एक ही रूप कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं 1981 में रिलीज हुई एक लोकप्रिय बॉलीवुड रोमांटिक हिंदी फिल्म के गाने। इस फिल्म का निर्माण प्रसन्न कपूर ने तिरुपति पिक्चर्स इंटरप्राइजेस बैनर के तहत किया था। फिल्म का नाम है प्यासा सावन। इसे दासरी नारायण राव ने लिखा और निर्देशित किया था। इस फिल्म में जितेंद्र, रीना रॉय, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी, देवेन मर्मा, मदनपुरी, आशालता वावगावकर शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस फिल्म का पहला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

दोस्तों, फिल्म प्यासा सावन उस साल की शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत, मैं वहाँ हूँ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

दोस्तों, संतोष आनंद द्वारा लिखे गए इन गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है। अगला गीत आप सुनेंगे मेघारे मेघारे। ये फिल्म का सबसे सदाबहार और प्रसिद्ध युगल गीत है, जिसे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने अपनी आवाज़ दी है।

दोस्तों, फिल्म की कहानी एक अमीर परिवार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक अमीर पिता जितेंद्र यानी चंद्रकांत अपने बेटे को पैसों की असल कीमत और जीवन में प्यार के महत्व को समझाते हुए अपनी खुद की प्रेम कहानी फ्लैशबैक में सुनाते हैं। जवानी के दिनों में चंद्रकांत को एक साधारण लड़की यानी मौसमी चटर्जी से प्यार हो जाता है और वे परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। हालांकि बाद में चंद्रकांत पैसे कमाने की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता, जिसे उसकी पत्नी बीमार होकर दम तोड़ देती है। जब उनके बेटे के साथ भी ऐसा ही होने लगता है, तब पिता उसे अपनी पुरानी गलती सुधारने की सीख देते हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म प्यासा सावन से।

दोस्तों, फिल्म प्यासा सावन के इन गीतों को आज भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। सुना जाए ये आखिरी गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

आकाश बानी इम्फाल कंगला चैनल दा हौजिक संदुकचरी फिल्म इसै सिंह खुदोल सिदा लौबीरसी इंगाले फिल्म दगी इसै खरा

我的腿比那他红书记了了不干的没让唐经那腿比给你拉起那起来那门爱心给我看的黑比比的人युब राजदो कमदौरी मया मुंगी राज सभा दूदगी हलक पद युब राजदो ममा तो ना खुदोंग हालगा东街特工差不多摆了灯啦，苦东怕另外忙个灯啦，妈妈不是这忙个苦一道，米得的皮囊都先擦了个，就不拉这个不那个度的，没下个没下度皮了灯啦，脑底啥都那喷不灵。हम ही बा मामा सिंगी मरते गी थोई भी बोक्चे भी मामा ने ये कुरांग भी दे मामा दूदी मचागे मचाग हेल बन्ना मतम दूदे इबे में नों खोंग बगुंग

युवराजन थवाईशाक ममा तुन शीघ्र गिहाई करीगुम्ब शिरो खीद रहे युवराज जी थवाई है वाय ममा तुन सिंह ते ये नहीं

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: Academic session listening ani kuntaruk kuntareti oina Central Sericulture Research and Training Institute Berhampur amadi Central Tashar Research and Training Institute Ranchi Jharkhanda Post Graduate Diploma Course in Sericulture Tamnabagidamak Directorate of Sericulture Manipur Sangaipat Imphal East amadi District Sericulture Office Singdasu application form phangbiragane form thajan bagi arwe bamatam jun gitang taramangane form gi mamal lupa chamanga oigane akupamarol office tagi khanglaba yagane haina Director of Sericulture Manipur na khangalagli.
9: Lilisana Institute Lamboi Khongnang Khongda Paramedical Coursing Tamnabagi Admission Haujare Manipur University the Affiliate Tauraba Pharmacy Council of India na Recognized Tauraba Institute Asida D-Pharm DOTT DMLT Amadidiyar IT da 2 years course Tamnabagi Ming Chanbi Hauro Lowest and Affordable Fees Loinana IDP Singh Sports Person Schedule Caste Schedule Tribe Ki Tonganba Khudong Shabu Singh Shupijari Akupamarol Gidamak www.lilisanainstitute.in टेलीफोन नंबर 7640898288 कॉन्टेक्ट तो बियो।
10: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदांग की पुंग तरियत मखाइ तारे मणिपुरी द पाओ ताबिरसी।
11: आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाओ पाजरी आहन बदमर वोइब पाओ। भारत की नुपी की फुटबॉल टीम ना सब वेमेन्स चैंपियनशिप लिसंगनी कुंतरुक लोरकपद राज्यपाल अजय कुमार भला मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान नुआई फोंगदोक्रे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सिंह तिनजंग काजंग दब खुनाय ओहेनना बहनबद मचियोइब चिनजाक शाब टंगाई फदी। ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स के जॉइंट सेक्रेटरी गांगुम उत्तम नहरी हेन सौखप खुनाय सेंगुटपद लाइक लाइसु निथिनाब मियो सिंह मसिंग हेंगत अनब चंगी। ngamkhai paring singda phajaba yum sing sarakpa lan thum sing laiba yonba masung sel thum kaithok kaisin gamari lainaba thabak sing hena section na yangsinaba griha mantri amit shah na khangan krai amasung india indonesia joint commission gi mipham ngasi new delhi de loishin krai मणिपुर की नुपी सानरोई मापन यौबा भारत की नुपी की फुटबॉल टीम ना साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन शाप वुमेन्स चैंपियनशिप लिसंगनी कुंतरुक लोरकपद राज्यपाल अजय कुमार भला मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान नुआई फोंगदोक्रे। राज्यपाल ने थादोर पुवारोलोमदाय चैंपियनशिप असीद भारत की नुपी की फुटबॉल टीम ना माई पालखीबासी

0: ꯈꯝꯕꯇꯨꯟ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯁꯣꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄ ꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯃꯦꯀꯣꯂꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 30 ꯇꯥꯔꯦ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯋꯦꯕ ꯃꯤꯇꯔ 390.1 ꯀꯤꯂꯣꯍꯔꯠꯁ 89.2, ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ, ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ, ꯖꯥꯏ ꯍꯤꯟ꯫
1: ꯁꯝꯄꯥꯗꯟ ꯑꯦꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯁ꯭ꯇꯨꯇꯤ ꯁꯍꯌꯣꯒ ꯑꯀꯥꯡꯁꯥ ꯁꯤꯡ, ꯄꯔꯤꯀꯜꯄꯅꯥ ꯑꯦꯕꯝ ꯅꯤꯔꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯁꯥ ꯖꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔ।
2: भारत प्रगति के पंख लेकर तेज गति से बढ़ता चला, आकाशवाणी जनवाणी बनी, सरकार तक पहुंचा दिया। खेत से खलिहान से, ज्ञान से विज्ञान से, खेल के मैदान से हो या रणभूमि पर आन से, वैभव बढ़ा, गौरव बढ़ा, शिखर देखा शान से, कि संस्कृति की सुरक्षा, परंपराओं को बचाया ध्यान से।
3: अपनी भारत की प्रगति में आकाशवाणी का अतुलनीय योगदान रहा है। विगत 90 वर्षों में देश की प्रगति की साक्षी रही आकाशवाणी।

0: जिन दिनों संविधान सभा भारत की विभिन्न परंपराओं की आधारशिला रख रही थी, उन्हीं दिनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर बहुत गहन चिंतन किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मानकीकरण में आकाशवाणी का योगदान कहीं दब सा गया। आइए प्रसारण की इस विशेष श्रृंखला में इस तथ्य को भी जानें। बता रही हैं आकांक्षा सिंह।
1: भारतीय संविधान सभा में गहन चर्चा के रूप में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव सामने आया। अंततः ऑल इंडिया रेडियो को यह कार्य सौंपा गया। ऑल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशनों को इसकी सूचना दे दी गई। जवाब में कलकत्ता, विशेषकर शांति निकेतन, विश्व भारती से ओमकारनाथ ठाकुर, दिलीप कुमार रॉय, एमएस सुबलक्ष्मी, तीमार बारा और आरसी बोराल की रचनाएं आईं। सितार वादक पंडित रविशंकर ने भी सहयोग किया। तमिल भाषा के विद्वान सुब्रमण्यम भारती की 3 रचनाएं मिली। इनके अलावा बंबई की रॉयल इंडियन नेवी, दिल्ली के गोरखा राइफल बैंड और अन्य कई संगीत संस्थाओं ने भी सहयोग किया। सभी के समन्वित प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि 26 मई 1951 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में तथा 7 सितंबर 1951 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के मानक रूप में स्वीकार कर लिया गया। भाषा के संदर्भ में आकाशवाणी के योगदान को बता रहे हैं सेवानिवृत्त उपनिदेशक राजभाषा डीपी मिश्रा।
2: मैं समझता हूं कि हिंदी के उत्थान में रेडियो की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि लोग बॉलीवुड को कहते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि पहले जनता जनार्दन में जाने का और जन जन तक पहुंचने का जो अंतिम साधन था वो रेडियो था। किसान भी, मजदूर भी अपने खेतों में लेकर रेडियो को जाता था और सुनता था कि आज कृषक का कार्यक्रम आ रहा है, आज ये फिल्म पर आ रहा है, और उसमें जो उसकी ध्वनि आती थी और जो उच्चारण में, जहाँ तक आप वर्तनी की बात की हैं, वर्तनी के साथ साथ उच्चारण जो हमारे रेडियो के जो प्रस्तुतकर्ता होते थे उनका नाम आते ही लोगों को लगता था कि इनका तो आज हमें समाचार सुनना है। तो उसमें रेडियो की भूमिका उस समय जब हमारा इंडिया रेडियो और सारी कथा जो है भारत को जानना है, मुझे लगता है कि रेडियो के जाकर के जन सामान्य में रेडियो घर में था। रेडियो जो है ये जीवित है और जीवित रहना चाहिए, तो उसकी उपयोगिता बहुत है।
0: वरिष्ठ रेडियो प्रसारक लक्ष्मेंद्र चोपड़ा बताते हैं,
3: आकाशवाणी ने समाज में एक नए आजाद हुए देश में धारणा के निर्माण का सबसे बड़ा कार्य किया और यहाँ की जनता को ये समझाया, जनता के बीच में एक धारणा विकसित की कि हमें अपने देश के विकास के लिए, जो देश लगभग 400-450 साल एक औपनिवेशिक दास्ता का केंद्र बना रहा, हमारी जनता में एक ये धारणा का निर्माण किया कि हमें अपने देश के विकास के लिए स्वयं मेहनत करना है, स्वावलंबी बनना है और राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। सबसे बड़ा योगदान आकाशवाणी का मैं अपने इतने लंबे सालों के अनुभव से समझ पाया हूँ कि ये आकाशवाणी का, ये बाकी रेडियो स्टेशन नहीं कर पाई है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने बहुत अच्छा मनोरंजन दिया होगा समाज को, लेकिन देश में स्वावलंबन की एक भावना और देश को विकसित करने की जो एक धारणा विकसित की वो आकाशवाणी ने विकसित की। और इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस देश के विकास में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान।
4: जितेंद्र पुरुथी आकाशवाणी दिल्ली में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी है। वे अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं।
5: हम न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भारत में कहीं भी बैठे किसी भी स्टेशन का कार्यक्रम सुन सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर स्ट्रीमिंग के माध्यम से लाइव प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। पुराने जो कुछ कार्यक्रम जो हुए हैं और हम किसी कारण से उसे नहीं सुन पाए हैं तो उनको भी सिलेक्ट करके सुन सकते हैं। एक डीटीएच के थ्रू भी हमारे 48 स्टेशनों का ट्रांसमिशन पूरे भारत में सुना जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक डीटीएच रिसीवर लगाना पड़ेगा, घर के ऊपर एक डिश लगानी पड़ेगी। सबसे जो लेटेस्ट हमारे नेटवर्क में है वो है वेव्स ओटीटी। वेव्स ओटीटी ऐप के थ्रू हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत सारे कार्यक्रम मोबाइल फ़ोन पर सुन सकते हैं। शीघ्र ही उसमें और भी सुधार किए जाएंगे।
0: आकाशवाणी के प्रसारण में तकनीक का अपना महत्व है। आकाशवाणी के इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व उप महानिदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव केवल तकनीक के प्रति ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील हैं। उनका मानना है कि आकाशवाणी की सभी सांस्कृतिक धरोहरों को उन्नत तकनीक के साथ संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए।
6: मुझे लगता है कम से कम 10-12 कंट्रीज को मैंने कॉन्टेक्ट किया होगा और वहाँ से बड़े अच्छे रिजल्ट मिले और शायद आज भी होगा कि लोग अपने आप से जोड़ना चाहेंगे। जो कुछ आज है ये कल के लिए इतिहास हो जाता है, तो हम आज जो भी काम करते हैं उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। आज उनको रखना बहुत आसान है। कभी कभी ये होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम एक डायलेक्ट में बना है तो उसको दूसरे डायलेक्ट में बदलना लगता है कि हम इसको दूसरे डायलेक्ट के लोगों को भी सुनाएं, तो वो जब आप अपने आर्काइव से निकाल के उसका कन्वर्शन करते हैं, उसको दोबारा बनाते हैं, तो वो बहुत अधिक अच्छा लगता है।
4: रेडियो पर सुनाई देने वाले अधिकतर कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी स्टूडियो से किया जाता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए रेडियो की ओबी टीम आयोजन स्थल तक जाती है। गणतंत्र दिवस परेड, स्वाधीनता दिवस समारोह,

0: सारा ले जाना पड़ता था, काफ़ी भारी इक्विपमेंट भी होते थे, जैसे पहले FM लिंक यूज़ करते थे हम। आउटसाइड फील्ड में जाके स्पोर्ट्स के इवेंट भी हमें करने पड़ते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तो हमारा नेशनल फंक्शन है, ये तो हर साल करना पड़ता है हमको। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग, कभी कभी तो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होके आती है। टेक्निकली पहले जैसे हम लीज लाइन्स यूज़ करते थे, FM लिंक यूज़ करते थे, और OB-WAN यूज़ करते, OB-WAN तो आज भी यूज हो रही है, और एनी नॉन एक्सचेंज लाइन्स यूज़ करते थे, जो एक्सचेंज टू एक्सचेंज, उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, नॉइज़ की प्रॉब्लम आ जाती थी। उसके PSTN लाइन्स होती हैं उनको, उसके बाद अगर डिजिटल लाइन आएगी ISDN लाइन्स, उसके लिए कोडेक्स आएगा, और उससे क्वालिटी, हमारी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही गुड होने लग गई है उसके बाद।
1: हवाओं पे लिख

0: पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: रेडियो प्रसारण का वो दौर एक नई करवट बदलता है जब दूरदर्शन का विस्तार हो रहा था। हम लोग खानदान, बुनियाद, ये जो है जिंदगी, सुरभि, चित्रहार जैसे कार्यक्रमों का असर रेडियो के श्रोताओं पर भी पड़ा। इस दौर में जीवन सौरभ, ये कहाँ आ गए हम, दहलीज, मानव का विकास जैसे अनेक रेडियो धारावाहिक आकाशवाणी से प्रसारित हुए। प्रबुद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने इन कार्यक्रमों का निर्माण किया। ऐसे ब्रॉडकास्टर्स में एक नाम उषा भसीन भी है। वे बताती हैं,
2: लोक सेवा प्रसारण और विकास संचार के क्षेत्र में आकाशवाणी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल प्रयोगों में जाना जाता है। और आकाशवाणी की सफलता का मेरे अनुभव से एक बहुत बड़ा कारण है कि आकाशवाणी ने अपने आप को श्रोताओं के दिल से भी जोड़ा, और सूचना देने और व्यावहारिक परिवर्तन का जो एक लंबा रास्ता है उसके बीच का, वो आकाशवाणी ने बखूबी तय किया अपने कुछ धारावाहिकों के माध्यम से, जिसकी आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर शुरुआत हुई 1988 में, और पहला धारावाहिक बना जीवन सौरभ, जो किशोरों की समस्याओं को लेकर था और पारिवारिक कलह और समाज में अनुशासनहीनता का जो उन पर एक आरोप लगता था, उस सब के कारण बना। उसके बाद उनकी मांग पर जीवन सौरभ 2 बना, जो वैवाहिक संबंधों के बारे में था। बाद में बाहर की जो संस्थाएं थी कुछ, जैसे पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है और पॉपुलेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में है, इन लोगों के साथ मिलकर हमने दहलीज बनाया। वो तो ड्रामा था, फिर किशोरों पर, और तिनका तिनका सुख बनाया, फिर ये कहाँ आ गए हम बनाया। तिनका तिनका सुख एक ऐसा धारावाहिक है जो आकाशवाणी को विश्व के जो मीडिया अध्ययन में एक सर्वोच्च स्थान दिलवाता है, क्योंकि उस पर इतना अध्ययन हुआ, इतना प्रकाशन हुआ है, उसमें अमेरिका में PhDs हुई हैं और बहुत सारे किताबों में उस पर चैप्टर लिखे गए हैं, तो वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इन सब धारावाहिकों में एक विशेष मेथोडोलॉजी होती थी और ताकि श्रोताओं से जुड़े रहें।
3: 1977 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उस काल में 1979 में प्रसार भारती विधेयक लोकसभा में लाया गया था। सरकार की अस्थिरता से वो विधेयक कारगर न हो पाया, लेकिन लगभग एक दशक बाद 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के उद्देश्य से प्रसार भारती अधिनियम संसद ने पास किया। इसकी अधिसूचना 15 सितंबर 1997 को जारी की गई। 23 नवंबर 1997 से प्रसार भारती अधिनियम लागू किया गया।
1: स्वायत्तता का प्रभाव प्रसार भारती पर पड़ने लगा, आय के संसाधन बढ़ाए जाने लगे। वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर सुखजिंदर कौर को मार्केटिंग हेड बनाया गया। वे अपने अनुभव को साझा कर रही हैं।
4: जहाँ तक कमाने की बात है, वैसे कमा तो रेडियो रहा ही था। वैसे बहुत से कमर्शियल सेंटर्स थे जो अपने अपने इलाके में वो

0: कुछ ना कुछ रेट फिक्स थे जो उस हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट लेते थे। लेकिन मार्केटिंग की जरूरत तब महसूस हुई जब बिल्कुल सरकार ने कुछ भी पैसा देना बंद कर दिया। इसीलिए हमें अपने आप ही कोशिश करके कि जब मुझे DDG ने बुलाया तो गायकवाड़ साहब थे उन दिनों, उन्होंने कहा कि एक मार्केटिंग डिवीजन शुरू करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, कुछ नहीं मुझे पता उसके बारे में, लेकिन आप मुझे 4 पैक्स दीजिए अपनी मर्जी से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो दैट इज हाउ हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ और बहुत बढ़िया ऑफिस था। लेकिन हमारा था जो लास्ट मैंने छोड़ा है तो शायद 500 करोड़ था।
1: भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में आकाशवाणी के योगदान की चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ प्रसारक धीरंजन मालवे।
2: विभिन्न खेलकूदों को प्रोत्साहित करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती आई है। स्टेडियम में तो लोग सीमित संख्या में ही जा सकते हैं, लेकिन आंखों देखा हाल के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस इत्यादि जैसे खेलों को आकाशवाणी घर घर पहुंचाती रही है। जब रेडियो देश में जनसंचार का सबसे प्रमुख माध्यम था, तब इन खेलों में आम लोगों की दिलचस्पी जगाने का काम आकाशवाणी ने ही किया। जब भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, तब आकाशवाणी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने इन खेलों से उत्पन्न उत्तेजनाओं को साझा किया। भावनात्मक एकता को सशक्त बनाने के इनसे बड़े उदाहरण और क्या हो सकते हैं। आकाशवाणी का खेल कूद के प्रति दायित्व केवल आंखों देखा हाल सुनाकर ही समाप्त नहीं हो जाता। समाचार बुलेटिनों में तो खेल कूद संबंधी समाचारों को स्थान दिया ही जाता है, साथ ही खेल कूद को ही समर्पित बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं। देश ने जब भी कभी एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, क्रिकेट विश्व कप या अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, तब आकाशवाणी ने ऐसे आयोजनों के लिए देश में माहौल बनाने और लोगों में दिलचस्पी पैदा करने में सार्थक भूमिका निभाई है।
3: अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जसदेव सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं।
4: जहां तक कमेंट्री की बात है, सन 1964 टोक्यो ओलंपिक में पहली बार जसदेव सिंह जी ओलंपिक में गए थे हिंदी कमेंट्री करने के लिए, इसलिए उन्हें हिंदी कमेंट्री का आदि गुरु कहा जाता है। 1970 से 1980 के दशक के बीच में हॉकी और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए जिसमें भारत ने नाम कमाया। 1975 का जो हॉकी का विश्व कप भारत ने जीता है, 15 मार्च सन 1975 को वो मुकाबला कुआलालंपुर में था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मुझे याद है मैंने आकाशवाणी पर, तब मैं रेडियो में आया नहीं था, रेडियो पर मैंने इसकी कमेंट्री सुनी थी और भारत को विश्व विजय बनते हुए सुना था। क्रिकेट हो, हॉकी हो, दूसरे खेल हो, इन सभी को आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रही है।
1: कुआलालंपुर में आयोजित जिस कमेंट्री का जिक्र कुलविंदर सिंह कंग कर रहे हैं, उसकी एक झलक आप भी सुनिए।
5: गेंद मिली है बाएं फ्लैंक के अंदर लेफ्ट हाफ के स्थान पर, इफ्तिखार को, इफ्तिखार ने पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने फिर इफ्तिखार को, इफ्तिखार ने जाहिद को, जाहिद बहुत खतरनाक खिलाड़ी, उन्होंने लेफ्ट आउट के स्थान पर मंसूर जूनियर को दे दिया जो सेंटर फॉरवर्ड, असलम ने इंटरसेप्ट किया, असलम ने गेंद छीन ली मंसूर जूनियर से, लेकिन असलम का फाउल लिया अंपायर ने और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया, पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने और गेंद भारत की टीम में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास, अब्बास भारतीय टीम में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और यह खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिवेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं 2-1 से।
1: रेडियो प्रसारण की एक विधा विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करना भी है। वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर ऋतु राजपूत बता रही है,
6: रेडियो कमेंट्री रेडियो की एक सबसे खूबसूरत आकर्षक विधा है और ऐसी विधा है जो किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई टॉक कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं या कोई लेख पढ़ रहे हैं तो आपके सामने आपकी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन कमेंट्री के तहत जब हम रेडियो कमेंट्री की बात करते हैं या आंखों देखा हाल है या सजीव प्रसारण है, जब हम उसकी बात करते हैं तो आप सामग्री तो तैयार रखते हैं जहाँ इवेंट हो रहा है उस इवेंट की, लेकिन आपको कई बार एक्सटेम्पोर बोलना पड़ता है क्योंकि स्थितियाँ कब कैसे करवट बदल लें ये एक कमेंटेटर को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। रेडियो कमेंट्री कठिन है, जी हाँ डगर पनघट की बहुत कठिन है, और कठिन मैंने इसलिए कहा कि इसमें आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आपके नाक है, कान है, आँख है, त्वचा है, जीभ है, इन सब के माध्यम से कमेंट्री को प्रस्तुत किया जाता है। आपकी आंखें देखती हैं, आपकी नाक सूंघती है, फूलों की खुशबू है, कौन सा फूल है, कहाँ से खुशबू आ रही है, आपकी त्वचा महसूस करती है, आर्द्रता कितनी है, गर्मी कितनी है, तापमान कैसा है, आपकी जीभ बोलती है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कान सुनते हैं, जो बैंड की ध्वनि है, शोर है, चिड़ियों की आवाज़ है, बादल का गर्जन है, जितनी भी आवाज़ें जहाँ पर आप मौजूद हैं हो सकती हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं पिरोनी होती हैं, समेटनी होती हैं अपनी कमेंट्री के माध्यम से। इसीलिए मैंने कहा कि रेडियो की जो कमेंट्री होती है जितनी असरदार होती है, जितनी प्रभावी होती है, उतनी ही कठिन भी होती है।
3: आइए उनकी प्रस्तुति की एक झलक सुनिए।
7: बहुत ही खूबसूरत खाकी वर्दी में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता आ रहा है और अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। वाह, क्या सल्यूट है! 14 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी से सम्मानित हो चुकी है दिल्ली पुलिस की ये टुकड़ी। सारे जवान श्रोताओं इसमें 6 फुट लंबे हैं और इनका आदर्श वाक्य है शांति, सेवा और न्याय। हमने डरना कभी ना जाना आंधी से, तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते कैसे अपनी शान से।
1: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला अपना अनुभव साझा कर रहे हैं।
8: 1983 में जब मैं भारतीय जन संचार संस्थान दिल्ली में शोध और अध्यापन में कार्यरत था, अनौपचारिक रूप से अनुभव लेने के लिए आकाशवाणी के न्यूज रूम में जाया करता था, क्योंकि वहाँ अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के न्यूज रूम में काम करते थे। मुझे याद है कि एक दिन सुबह का बुलेटिन था और समाचार रॉयटर का और बीबीसी का आया कि ग्रेनेडा, एक छोटा सा देश अमेरिका के पड़ोस में, उसको अमेरिका ने स्वतंत्र करवा दिया। बिना सोचे समझे ये समाचार हमने बुलेटिन में डाल दिया, मगर 7 बजते-बजते हलचल मच गई और फिर समझ में आया कि भारत की दृष्टि से यूएस ने, अमेरिका ने ग्रेनेडा को स्वतंत्र नहीं कराया था, अमेरिका ने तो उस पर कब्जा किया था, आक्रमण किया था। और उसके बाद जो लोग उस बुलेटिन में कार्यरत थे उनका ट्रांसफर हुआ और मुझे भी न्यूज रूम में जाने के लिए कुछ दिन के लिए मना कर दिया गया। इतने मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि आकाशवाणी से दी गई सूचनाएं कितनी संवेदनशील, सेंसिटिव होती हैं और कितना उनमें तथ्यात्मक इनपुट होना चाहिए, ये इस घटना से समझ में आया, जो मैंने आगे कक्षाओं में विद्यार्थियों को और प्रशिक्षकों को बताने का प्रयास किया।
3: विजय दीक्षित उन महान रेडियो ब्रॉडकास्टर्स में से एक हैं जिन्हें प्रसारण कला के साथ जीवन दर्शन का भी ज्ञान है। वे वयोवृद्ध होने के साथ साथ अस्वस्थ भी हैं, फिर भी बड़ी काम की बात बता रहे हैं।
9: आकाशवाणी बहुत गरिमा में सेवा रही है। रेडियो सुनकर लोग घड़ी मिला लेते थे, समाचार हो कि अनेक कार्यक्रम, आवाजें ऐसी कि सुनते चले गई, भाषा आम बोलचाल की मगर शब्द और उच्चारण एकदम शुद्ध, किसी श्रोता तक गलत भाषा न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान आकाशवाणी ने हमेशा रखा। अलग अलग भाषा भाषी केंद्रों पर श्रोताओं के पत्र और पोस्ट कार्ड हजारों की संख्या में आते थे। आकाशवाणी का मतलब यह था कि देश और समाज में संवादहीनता की स्थिति कभी ना आए।

0: आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र पर काम करते हुए अपनी परंपराओं को बनाए रखा। एक परंपरा श्री रामचरितमानस की भी है जो 1980 से निरंतर चली आ रही है।
1: 1980 में भोपाल केंद्र पर एक ऐसी महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसे आज तक लोग याद करते हैं और वो शुरुआत थी भारत में मानस गान का प्रसारण।
2: मानस गान की रिकॉर्डिंग से जुड़े पक्ष को बता रहे हैं वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव।
1: मानस गान यानी रामचरित मानस गान का प्रसारण उस समय भोपाल केंद्र के निदेशक श्री समर बहादुर सिंह हुआ करते थे और ये समर बहादुर सिंह जी का ही ख्याल था कि यहाँ पर जो कलाकार हैं उनके साथ मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है जो लोगों के घर घर तक सुबह सुबह पहुँचे और इसी विचार ने मानस गान को जन्म दिया था। मानस गान के लिए उस समय कुछ सितारे या कुछ कलाकार जो है वो केंद्र पर ही कार्यरत थे लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे प्रसारण क्षेत्र में कुछ अन्य कलाकार थे वो भी इसमें शामिल हुए जिनमें प्रमुख नाम रामकृष्ण चंदेश्री, जयश्री थत्ते, इंद्र कुमार और साथ ही साथ जो हमारे संगीतकार थे, संगीतज्ञ जो कलाकार थे, जो वाद्य कलाकार थे, उन्होंने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया। और इसकी जो पहली रिकॉर्डिंग है वो तत्कालीन राज्यपाल महोदय के यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने इसका जिसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभ किया प्रसारण हेतु, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसे आज तक याद किया जाता है।

0: भारत में रेडियो प्रसारण की गौरव यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के प्रसारण पर अपने एक संबोधन में कहा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातें करने के लिए, और रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरे देश की ताकत गांव में है, मेरे देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। फिर एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
2: प्रधानमंत्री जी के मन की बात के प्रसारण का सार्थक प्रभाव पड़ा। दूर दराज के श्रोता रेडियो से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसे आगे बढ़ाने में आकाशवाणी सदैव अग्रसर रही है। शीघ्र ही हम शताब्दी समारोह की ओर बढ़ेंगे।

प्रसारण की प्रतिध्वनियां इस श्रृंखला की छठी और अंतिम कड़ी से जुड़े सभी श्रोताओं का आभार। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। इस विशेष श्रृंखला के समापन के साथ स्वीकार करें।

0: देवेंद्र त्रिपाठी
1: और निशा भारद्वाज का नमस्कार।
2: प्रसारण की प्रतिध्वनियां। अभी आप सुन रहे थे इस विशेष वृत्त रूपक श्रृंखला का छठा और अंतिम भाग। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में

रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
2: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारी ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है पहली बात, और दूसरी बात हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
3: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
2: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
3: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा, और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
2: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
3: बिल्कुल,
2: और इसमें मेरा ख्याल है AI की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने

0: वाले समय में, तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
1: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
0: जी
1: और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट किया
0: जी
1: और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर, हेल्थ केयर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है,
0: जी
1: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
0: सर्जरीज में भी इसकी काफी
1: बिल्कुल,
0: उपलब्धि है।
1: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते, कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है, ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को ये तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
0: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज़्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, ज़मीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
1: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और NCD की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
0: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
0: जी,
1: वो GDP का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
0: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है। लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है, राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की ज़रूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जाँच के साथ साथ एक ज़रूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क

0: तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक ज़बरदस्त क्रेज़ है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो ज़रूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी ज़रूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट You were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप और फिल्मी गीतों के इस सफर पर अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। फिल्मों गीतों का ये सफर शुरू होगा किशोर कुमार की आवाज के साथ। बप्पी लहरी का संगीत है, फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल। और इसी के साथ जरा घड़ी मिला ले, 11:46 और 18 सेकेंड हो चुके हैं। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये है फिल्मी गीतों का

जी हाँ, ये आकाशवाणी है, आपकी अपनी वाणी है। 11:51 और 11 सेकंड हो चुके हैं, बस 9 मिनट बचे हैं और उसके बाद हो जाएगा 8 जून। 8 जून होते ही 90 सालों का हो जाएगा आपका अपना आकाशवाणी, और इस सफर में आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, इसकी शुभकामनाएं आपको भी और हमें भी। ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर फिल्मी गीतों का ये सफर, और आज आपके संग है अर्पना। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको भी इस 90 साल तक जो आपने हमारा साथ दिया। और इसी के साथ अगला गीत भी आपको बता दूं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, आरडी बर्मन का संगीत है, और आवाज जो होगी वो होगी एक बार फिर से किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है कटी पतंग। इस फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

यही प्यार दीवाना होता है आपका और हमारा, क्योंकि ये 90 सालों का सफर जो है यूं ही चलता रहेगा आगे भी। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपका आकाशवाणी अब हो गया है 90 साल का। 11:55 हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे लता जी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, फिल्म का नाम है लोफर। इसी गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालय शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। तेज धूप, बढ़ता तापमान, लू, डिहाइड्रेशन, थकान और पाचन संबंधी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती हैं। ऐसे समय में हमारे पारंपरिक ज्ञान और भारतीय जीवन शैली की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भारत के पारंपरिक पेय पदार्थ और स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से हमारे घरों में बनने वाले पेय पदार्थ जैसे आम पन्ना, सत्तू, बेल का शरबत, छाछ, जौ का पेय और नींबू पानी न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि गर्मी से राहत देने और स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशिष्ट विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
3: नमस्ते, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: हमारे साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ है डॉक्टर रीना अरोड़ा। आप एक जानी मानी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। स्वागत, नमस्कार रीना जी, आपका भी।
4: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
2: और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं मोनी दीपा तालुकदार। आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से पोषण और इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं। आपका भी स्वागत, नमस्कार।
5: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: अपनी चर्चा शुरू करने से पहले क्यों ना हम सुन लें कि गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री ने 31 मई के मन की बात के कार्यक्रम में क्या कहा।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम प्रकाश की। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौसम में हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो समय समय पर गाइडलाइंस इशू करते हैं, उन्हें भी हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये बताइए, ये गाइडलाइंस क्या हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
3: बहुत सही कह रहे हैं हैं आप, गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस समय जब गर्मी अत्यधिक है, जिसको चरम सीमा पे आप कहिए, इस समय गर्मी देश के विभिन्न भागों में है और जैसा कि आगे आने वाला है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और पानी जो है बरसात भी कम होगी, तो हर विभाग जो है देश का उसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा एक डिजास्टर अलर्ट जो है वो मोबाइल पे भी
2: बिल्कुल
3: किया गया चेक।
2: हाँ।
3: तो ये भी एक उस तरीके से है। और अभी 3-4 दिन पहले भी वो अलर्ट आया था जब गर्मी चरम सीमा पे थी।
2: जी।
3: तो ये हर विभाग जो है सरकार का इसको हर साल ही कुछ ना कुछ करते हैं, ये नई नई चीजें जो है ईजाद की जा रही है जिससे कि लोग इसमें ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं और हर सरकारी अस्पताल में लू के चपेट में आने वाले लोगों के लिए या जो गर्मी से त्रासदी होती है उसमें कोई भी जो व्यक्ति अस्पताल में आता है तो उसका हम लोग यूजुअली रिपोर्ट भी करते हैं और उनको हम लोग देखते भी हैं।

0: कि कैसे इलाज करना है। तो ये सारे स्वास्थ्य विभागों में, सारे अस्पतालों में, डिस्पेंसरी में गर्मी से जिन जिन लोगों को दिक्कतें होने की संभावना होती है या दिक्कतें होती हैं, उनके लिए कैसे उनका हमें मैनेज करना है, कैसे उनका उपचार करना है, ये सब दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और सबके लिए लागू हैं।
1: जी, ये तो आपने बताया कि जो आपके हॉस्पिटल्स में किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी हुई है गाइडलाइंस के तहत, लेकिन जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कैसे इस चीज को समझें कि कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें ध्यान रखना चाहिए, बाहर ना निकलें, या अगर लू लग जाए तो किस तरह से उसको सीरियसली लें, कब वो डॉक्टर के पास जाएं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी जी, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर राज्य में भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या क्या कैसे सावधानी बरतनी है और क्या क्या सावधानी बरतें, ये भी काफी जारी किया हुआ है। और इसमें जैसा आपने कहा, तो मैं श्रोताओं के लिए ये बताना चाहूँगा कि दोपहर में, भरी दोपहरी में नहीं जाएं, तो 12 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, जब धूप बिल्कुल चरम सीमा पे होती है, सूर्य हमारे सर पे होता है, उस समय गर्मी से में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ अत्यधिक काम है, बहुत ज़रूरी काम है, तो आप या तो सवेरे के समय कर लें या शाम के समय कर लें, जब धूप इतनी तेज़ नहीं होती है। अगर बाहर निकलें तो छतरी लेके निकलें या गमछा या फिर कपड़ा रख करके निकल सकते हैं, गीला कपड़ा करके अपने सर पे डाल करके निकल सकते हैं, या साथ में पानी भी जरूर लेके निकलें। ये प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें मन की बात में कहा था और ये बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकलें गर्मियों में, इस समय मई जून के महीने में कभी भी आप बाहर निकलें तो साथ में पानी की बोतल जरूर लेके निकलें। तो ये कई चीजें हैं और इस पे मेरे ख्याल से सब श्रोताओं को पता भी होना चाहिए। इसमें रहन सहन की भी बात है, तो अगर कई लोग जो है ना बड़े डार्क क्लोथ पहनते हैं, तो हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, टाइट नहीं पहने। तो जो पहले जैसे कुर्ता पजामा लोग पहनते थे गर्मियों में, आप कई बार देखेंगे, तो ये ऐसे कपड़े पहनकर जाना बाहर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गर्मी शरीर में बचती भी है और थोड़ी हवा से रहता है तो जो पसीना आता है वेपोरेट हो जाता है, जिससे शरीर को खुद ब खुद जो है ठंडक महसूस होती है। तो ये कई चीज़ें हैं जो हम लोगों को ट्रेडिशनल जो हम लोग करते रहे हैं, और ये बार बार दिशा निर्देश जारी भी होते रहते हैं, और मेरा मानना है श्रोताओं के इस पर अमल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और हम कार्यक्रम भी इसीलिए समय समय पर करते रहते हैं कि लोगों को बताया जाए, कहीं कोई चूक ना हो और इस कारण से कोई हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। जैसा आपने पानी का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो क्या जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये कभी कभी फेटल भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल, डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी फेटल हो सकता है, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और आप जैसे कई लोग हैं जिनको उम्र दराज लोग होते हैं, उनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से उन्हें पसीना नहीं आता है, तो पसीना आएगा और ज़्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और पसीने में और कई तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं पानी पिए और तरल पदार्थों के साथ वाला पानी पिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा नींबू पानी पिए, तो नींबू की वजह से उसमें पोटेशियम सोडियम चीजें आती हैं, तो उससे तरल पदार्थ पानी में आपूर्ति होती है, सादे पानी से बेहतर माना जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको डिहाइड्रेशन, तो पानी और तरल पदार्थ से आप डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ वृद्ध लोग होते हैं जिनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं बीमारियों की वजह से, तो उनको पसीना नहीं आ पाता है, तो कई बार बिना पसीने के अभाव में भी आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसमें हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन होगा तभी जो है गर्मी का दुष्प्रभाव होता है, गर्मी के दुष्प्रभाव बिना डिहाइड्रेशन के या स्वेटिंग जब नहीं होती या पसीना नहीं आ रहा होता है तब भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत लगे, सर में भारीपन लगे, चक्कर लगे, बहुत ज़्यादा पसीना आए, जो कि आपको लगे कि आप ठंडक में आ गए फिर भी पसीना आ रहा है, तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आपको गर्मी का आहत हो रहे हैं। कई बार क्रैम्प्स होने लगते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है, कई बार आप धूप में जाते हैं आंखों में जलन होने लगती है, तो ये सब चीज़ें जो नॉर्मली आपको नहीं होती है, और कोई भी नई चीज़ आपको गर्मी में लगती है तो आप ये मानिए ये गर्मी के या गर्म से ज़्यादा तापमान के दुष्प्रभाव हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, लेकिन हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो आपने नींबू पानी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे शीतल चीज़ों के बारे में हमें बताया इस कार्यक्रम में मन की बात में जिक्र किया उनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे, आपके पास भी फिर वापस आएंगे और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी रीना अरोड़ा जी कि एक आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हर मौसम में जब ऋतु चक्र की बात करते हैं और जैसे जैसे ग्रीष्म काल आता है या कोई दूसरा काल आता है तो हमारा जो रसोई है उसका मिजाज बदल जाता है, तो किस तरह से रसोई का लिंक जो है ये आयुर्वेद में ऋतुचर्या जिसको कहा गया है वो कैसे जुड़ता है आपस में?
2: जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है शालिनी जी। अक्सर क्या होता है जैसे ही ऋतु बदलती है हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आजकल बच्चों को भी बड़ों को भी चीजें समझ नहीं आती हैं, फुल एसी ऑन करके वो गर्मी में भी सोचते हैं वही मौसम है, वही चाउमीन, वही जंक फूड्स और वही स्पाइसी फूड्स वो सब खाते रहते हैं, जबकि बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मौसम के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर्स है तो हमारी डाइट भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमें मार्केट में भी सत्तू दिखने लगता है इस मौसम में, नींबू पानी दिखता है, बेल का शरबत दिखता है, आम पन्ने की बात करते हैं लोग, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लूज कपड़े डालने चाहिए, ये आयुर्वेद में भी एडवाइस है कि आप लाइट कलर्स के कपड़े डालिए, कॉटन डालिए, बिल्कुल सिंथेटिक कपड़े मत डालिए ताकि उसमें से हवा पास हो सके, और सिर पे पानी डालिए, चंदन का यूज कीजिए इन दिनों पे। सर्दियों में अगरू का लेप बताते हैं तो समर्स में बिल्कुल चंदन का लेप आप बॉडी पे कीजिए, सबको पता है चंदन बहुत ठंडा है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो ये सब चेंजेस और डाइट में जैसे कुष्मांड है, बहुत आजकल सीजन में जो चीजें आ रही हैं, पंपकिन जिसको बोलते हैं उसका सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, कूलिंग एजेंट है, घिया तूरी टंडे टाइप की सब परवल जो सब्जियां आ रही हैं ये भी बहुत कूलिंग है, वाटर बहुत ज्यादा है इनमें तो बॉडी में वाटर कम नहीं होता है, खीरा है एक्सेस में आ रहा है इस सीजन
1: में, सब्जियों में या फलों में पानी का कंटेंट ज्यादा हो उसको।
2: और एक और चीज मैंने देखी है, भिंडी बहुत ज्यादा आ रही है, अब लोग कहेंगे कि ये वायुवादी करती है, ऐसा नहीं है। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं और होता क्या है धीरे धीरे इतनी गर्मी से कफ बॉडी में कम होता जाता है, ये कफ खांसी वाला कफ नहीं है, ये कई अच्छी चीजों वाला कफ है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है, बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करता है, तो उनको बढ़ाने में ये जो सीजनल वेजिटेबल्स आजकल जैसे भिंडी आ रही है, अरबी आ रही है, तो अगर किसी को सूट करती है तो उनको ये खाना चाहिए ताकि आपकी वो इम्यूनिटी, आपका इनहेरेंट जो हेल्थ हमारी होती है ना, ओज जिसको बोलते हैं, बोलते किसी को देख के हम कहते हैं बहुत ओजस्वी व्यक्ति है, तो वो आपका मेंटेन रहना चाहिए, अगर आपकी वो बेसिक स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है तो आपको कोई हीट स्ट्रोक इफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने देखा है आजकल बच्चे भी कहीं ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, वो भी एक कारण है, खाली गर्मी कारण नहीं है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, आप चल पड़े ऑफिस के लिए इतनी गर्मी में, तो खाली पानी से गुजारा नहीं होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्वेटिंग हो रही है आपको, तो ये बेसिक चीजें भी अगर हम मेंटेन करें तो काफी हद तक इस गर्मी से हम बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और बचना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो ये कार्यक्रम है उसमें कुछ और भी हम चीजें शामिल करते हैं, मनोरंजन को भी स्थान देते हैं, तो एक प्यारा सा गीत चाहूंगी कि श्रोताओं के नाम आप सुनाएं, हम सब बैठ के सुनेंगे, आनंद लेंगे। कौन सा गीत जहन में आ रहा है जो आप सुनना चाहेंगे इस समय?
2: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मैं हूं शारणी मित्तल और कार्यक्रम में हम कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत अभी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए देश के अलग अलग कोनों से 10 पारंपरिक देसी ड्रिंक्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई ब्रांडिंग तो नहीं है, लेकिन इनमें हमारी पीढ़ियों का अनुभव छिपा है। तो मैं जानना चाहूंगी मोनी दीपा जी आपसे कि पोषण की दृष्टि से इनका क्या महत्व है। अगर हम जानना चाहें कि उत्तर भारत का, उन्होंने बात की है आम पना, पंजाब हरियाणा की लस्सी और गुजरात राजस्थान की छाछ, ये ड्रिंक्स हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में कैसे मदद करती है, बताइए
1: जी। प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन में कि पानी पीते रहिए, और साथ में उन्होंने हमें 10-12 भारतीय पेय पदार्थों का एक सूची दी है जो हमें एक अंदाजा देती है कि हम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स को कैसे शामिल कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। और इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, ये कोई टोटका नहीं है या ये केवल एक अंदाजे की बात नहीं है। ये हमारी नानी दादी के नुस्खों में पारंपरिक रूप से लिखा हुआ है, प्रमाणित है और उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा है। उत्तर भारत में क्योंकि लू बहुत अत्यधिक पड़ती है और आम का वेजिटेशन वहाँ ज्योग्राफिकली होता है, इसीलिए कच्चे आम को उत्तर भारत में आम पन्ना के रूप में गर्मियों में खाने का एक कल्चर कस्टम रहा है। आम में एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो गर्मियों में हमारे पेट को, एसिडिटी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम है, इसमें पेक्टिन है, कच्चे आम में पेक्टिन रहता है जो एक किस्म का सॉल्यूबल फाइबर है। सॉल्यूबल फाइबर हमारे स्टमक की लाइनिंग को टोन करता है, उसको सूद करता है। तो गर्मियों में जो अपच की समस्या रहती है और जो उसमें इन्फ्लेमेशन, जलन या एसिडिटी की गैस की समस्या हो सकती है, उन सब के लिए ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो आम पन्ना इस प्रकार से बहुत बेनिफिशियल है उत्तर भारत में। गुजरात और राजस्थान की तरफ उन्होंने छाछ लस्सी का जिक्र किया है। छाछ लस्सी अपने आप में प्रोबायोटिक्स है, ये तो अपने आप में ही एक क्लेम है। प्रोबायोटिक नाम अपने आप में एक क्लेम है क्योंकि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया है। और ये यदि हम घर की बनी दही से बनाते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी दूध के गुणवत्ता वाली चीजें भी मिलती है। और प्रोबायोटिक्स अपने आप में गट माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है और जो उसके कल्चरल माइक्रोफ्लोरा है, उसमें गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ब्रेन गट जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को और गट बैरियर को एनहांस करता है, ब्रेन गट रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। उससे गर्मी में दिमाग भी शांत रहता है और स्ट्रेस रिडक्शन में भी ये बेनिफिट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने तीसरा जिक्र, उन्होंने हमें
0: पंजाब हरियाणा की लस्सी का भी जिक्र किया है।
1: लस्सी भी एक प्रकार का प्रोबायोटिक ड्रिंक है इसमें। और लस्सी में क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वाटर अमाउंट एडेड, हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को काफी डाइल्यूटेड रख सकते हैं, तो उसमें हम अपने प्रोबायोटिक के गुण भी हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा हमें फैट या हमें जो दूध का एक्सेस फैट या उसमें जो मलाई रहती है, चिकनाई रहती है, उसको भी हम डाइल्यूट करके उसकी चिकनाई को रिड्यूस कर सकते हैं। तो लस्सी, छाछ और इस प्रकार के भारतीय पेय पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तो सुनिश्चित करते ही हैं, रिहाइड्रेट करते हैं, रीमिनरलाइज करते हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक है और हमें अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ना चाहिए और बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स और एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक्स से बचना चाहिए
0: जी। पर आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे और युवा जो हैं, अक्सर जो बाजार में चीजें मिलती हैं, डिब्बा बंद सारी चीजें होती हैं, उन पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे उसको कहीं प्रमोशन किया जाता है उनको उस तरह से। तो ये जो एक धारणा अब बढ़ रही है और इस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घर में बनी हुई और ट्रेडिशनली जो चीजें बनती हैं वो ज्यादा लाभप्रद रहती हैं। तो क्या हाइजीन फैक्टर भी उसमें इम्पोर्टेंट है, और क्या बाजार में जो चीजें मिलती हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं?
1: आजकल युवा पीढ़ी पूरी तरह से पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ काफी आकर्षित है। उनको वो चीजें चाहिए जो कूल है, जो फैंसी है, वो ट्रेडिशनल और हमारे भारतीय दादी नानी के नुस्खों वाली चीजों को अनकूल समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें इतनी अत्यधिक मात्रा में चीनी एडेड रहती है। एक 300 ml का यदि हम एक कोल्ड ड्रिंक देखें तो उसमें लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी रहती है। कंपेयर टू जब हम ये ट्रेडिशनल आम पन्ना और इस तरह के ड्रिंक्स घर पे बनाते हैं तो वो मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें हम एक दो चम्मच चीनी, शहद या गुड़ से काम चला लेते हैं। प्रोसेस्ड ड्रिंक्स में इवन फ्रूट जूसेस जो बाजार में मिलते हैं उसमें परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स अलाउड है, उसमें फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स पड़ते हैं जो उनके कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है और वो परमिटेड भी है। तो कई सारे एडिड प्रिजर्वेटिव्स, परमिटेड फ्लेवर्स, सिंथेटिक कलर्स, प्रोसेसिंग एड्स अलाउड है सिंथेटिक ड्रिंक्स में। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में तो कैफीन की मात्रा रहती है, उसके अलावा उसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड्स पड़ते हैं, तो काफी सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस जाते हैं इनके फॉर्मुलेशन में। उसके कंपैरिजन में जब हम ये ड्रिंक्स, कोकम ड्रिंक, सत्तू का शरबत घर पे बनाते हैं, एक तो ये मिनिमली प्रोसेस्ड है, हम इनके फॉर्मूला को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसमें चीनी की मात्रा कम रख सकते हैं। और हाइजीन का आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उठाया, क्योंकि लोग शरबत के नाम पे गन्ने का जूस भी सड़क किनारे बिक रहे हॉकर से, वेंडर से लेते हैं, उसमें किस प्रकार का पानी का इस्तेमाल किया गया है, इवन जो बर्फ इस्तेमाल हुई है क्या वो बर्फ गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी थी कि नहीं, क्योंकि हम कई बार इन पैरामीटर्स को इग्नोर करते हैं, हम बर्फ के बारे में इतनी तहकीकात नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि पानी उसमें जो यूज किया गया है गन्ने को धोने के लिए या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए वो किस प्रकार का रहा है। तो एक मसला उसमें
0: मतलब वो वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हो सकते हैं,
1: और गर्मियों में बैक्टीरियल ग्रोथ काफी फास्ट रहती है, तो वाटरबॉर्न डिजीजेस का रिस्क रहता है जब हम ये चीजें खुले वेंडर से या स्ट्रीट फूड से हम खरीदते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इन सब ड्रिंक्स को युवा पीढ़ी को खुद बनाने को घर पे दे कि आप खुद बनाइए, क्योंकि जब वो खुद बनाएंगे तो वो पियेंगे भी।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और कोशिश करते हैं कि सब लोग अपने से बनाएं और एक कुछ वेरिएशन लाके बनाएं और कुछ इंटरेस्ट के साथ बनाएं, तो एक अच्छी चीज बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसको कंज्यूम करने में। डॉक्टर अनुपम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम जब बात कर रहे हैं मोनी दीपा मैम से, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी बताई, तो जब आप एज अ डॉक्टर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो बहुत एक्सट्रीम लू लगने के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण आता है, तो किस तरह के आप पे उनको सजेस्ट करते हैं फॉर रिकवरी?
2: देखिए, हम लोगों के पास जब कोई आ जाता है मरीज जिसको कि लू लग गई होती है या कई बार कहते हैं सरसाम हो जाता है जैसे, तो हीट से इलनेस हो गई है, तो उसको हम लोग यूजुअली तो सादा पानी अगर नहीं है कुछ तो हम लोग कहते हैं, नहीं तो हम लोग तरल पदार्थ वाला देते हैं, जैसा मौनी दीपा मैडम ने कहा, बहुत सही कहा इन्होंने कि आपको जो है पानी में मिनरल्स डालने पड़ेंगे तो उसके लिए देते हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नींबू पानी है या बेल का शरबत है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप अच्छे से दे सकते हैं। लस्सी है तो दही है, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। अब अगर अस्पताल में आता है तो फिर हम लोग जो है लिक्विड्स जो देते हैं तो फिर हम आईवी फ्लूइड देते हैं, तो उसमें अलग तरीके का देते हैं, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट अगर उसके कमी है तो ओआरएस का घोल हम लोग पिलाते हैं, तो ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं। तो आप अगर वैसे सादा पानी आप समझिए, तो पानी ज़रा एक चुटकी नमक, ज़रा सी चीनी, ये डाल करके और नींबू डाल करके एक अच्छा पेयजल बन जाता है जो कि पूरी तरीके से पौष्टिक होता है। तो हम लोग अस्पताल में, तो अब श्रोताओं के लिए हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें एसेस करना पड़ता है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि कितना डिहाइड्रेशन है
0: जी, बिल्कुल,
2: और ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कैसी चल रही है, नब्ज कैसी चल रही है,
0: हर पेशेंट का अलग
2: है, वो उस हिसाब से अलग है। लेकिन श्रोताओं के लिए मेरे हिसाब से जरा सी चीनी, अगर डायबिटीज नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं है तो जरा सा नमक और नींबू डाल करके पानी में एक बहुत अच्छा पेयजल बन जाता है जो आसानी से हर कोने में, भारत के भी और विश्व के भी हर कोने में चीज मिल जाती है। बाकी अगर आप ज्यादा

0: हैं, लेकिन बाकी जो है डायरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां भी बहुत संभव है कि हो जाएंगी।
1: जी जी और खासतौर पर हम सुनते हैं गर्मियों में पेट संबंधी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसमें ये कारण भी जुड़ता है, पानी का तो है ही कारण कि साफ पानी नहीं पिया या खाना जो है रखा हुआ बना
0: घर
1: हुआ
0: में
1: खा
0: बना
1: लिया।
0: हुआ खाना
1: जी
0: और ताजा खाना,
1: ताजा
0: ये दो
1: खाना।
0: चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गर्मियों में जैसा मौनी दीपा जी ने भी कहा, रात का बना खाना अगर आपने सवेरे
1: जी
0: खाया तो कई बार वो खराब जाता
1: खराब
0: है।
1: हो जाता है क्योंकि बहुत गर्मी में इजीली वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं उसमें। यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी
0: जी
1: रीना जी कि बहुत सारी बातें अभी हमने की पेय पदार्थों के बारे में, अभी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी क्योंकि और सारे राज्यों की बात अभी छूट गई है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ORS घोल है जो बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है
0: जी
1: नमक और चीनी मिलाकर, तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे आसानी से बनने वाले कुछ ड्रिंक्स हैं जो आप बता सकती है हमारे श्रोताओं के
2: जी
1: लिए?
2: इसमें आयुर्वेद में खजूर आदि मंत्र एडवाइज्ड है टेक्स्ट बुक में, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। इसमें इमली डालते हैं, एक वृक्ष अम्ल एक प्लांट है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुनक्का, इमली, खजूर, आंवला और अनार, चार गुना पानी में इसको भिगो देते हैं 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैश करके छान के पी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको और पतला कर सकते हैं, अगर किसी को मीठा डालना है तो गुड़ या चीनी थोड़ी सी डाल के पी सकते हैं। अब इसमें जो खजूर है और मुनक्का है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए आंवला तो सबको पता है कंप्लीट रसायन है, अनार वैसे ही बहुत अमृत है वो बॉडी के लिए, तो देखो कितने चुन चुन के आयुर्वेद में उसमें डाली गई हैं चीज़ें जो बिल्कुल सारी ठंडी हैं और आपको ऐसा एकदम ORS से ज़्यादा बेटर शायद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी ये, कि अगर आपको अगर घबराहट हो रही है और गर्मी लगी और ये करे आपने ड्रिंक पी ली तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको जरा भी वीकनेस रहेगी। ये रूटीन में दे सकते हैं गर्मी में, बच्चों को भी बड़े भी ले सकते हैं, शुगर नहीं है तो बिना शुगर के इनको ही मिक्स करके आप मिक्सी में ग्राइंड करके आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, अनंता, आम, कमल, किशमिश, गुलाब की पत्तियां, चंदन, उशीर यानी खस, खस की ठंडाई बनाते हैं लोग रात को भिगो के, सुबह ग्राइंड करके दूध में, बादाम वगैरह भिगो के वो भी उसमें डालते हैं, ऐसा कुछ घरों में बनता है सुबह ये ड्रिंक। ठंडाई जो आजकल बनी बनाई आती है ये उसका घर पे बनने वाला वर्जन है,
1: अच्छा
2: कि रात को उसको भिगोते हैं, सुबह अच्छे से उसको पीसते हैं, दूध डाल के, थोड़ा पानी डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, थोड़ा सा काली मिर्च भी डालते हैं उसमें, एंड दिस इज वेरी गुड इन दिस समर सीजन। ये अक्सर बड़े लोग पहले पीते थे, और ये जो प्लांट्स मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी एक यूज करके उसका ड्रिंक बना के भी घर पे पी सकते हैं। लेमन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दिस इज वेरी गुड। चंदन सबको पता है, उसको भी पानी में घोल के चीनी डाल के ले सकते हैं। खस, किशमिश, गुलाब, कमल और अनंता ये कॉमन ही है, बट बाकी चीजें आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं एडवाइस करूंगी, किशमिश, मुनक्का, खजूर, काश्मीरी एक चीज आती है, और फालसा, आजकल का सीजन है फालसा बहुत आता है उसमें,
1: हाँ।
2: तो इन चारों को भी ग्राइंड करके मिक्सी में, और उसके बाद एक ड्रिंक बन सकता है। और अगर आप इजाजत दें शालिनी जी, तो मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रिंक्स बताए थे, 3-4 ड्रिंक्स की रेसिपी बता दूं शायद।
1: हाँ तो ये मैं रेसिपी जरूर आपसे सुनूंगी, अभी मुझे और भी बहुत सारी बातें मोनी दीपा जी से भी पूछनी है, सर से
2: जी
1: भी पूछनी है,
2: जी
1: पर यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। डॉक्टर साहब कौन सा गीत आपको अभी याद आ रहा है या बहुत पसंद है आपको?
0: सुख के सब साथी, दुख दुख में ना कोई।
2: अरे
1: चलिए तो ये
2: वाह,
1: प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम लौटेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: आप हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में, और अभी रीना जी से हम कुछ रेसिपीज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोनी दीपा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे और ऐसे जो ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका खास तौर पर जिक्र किया है, जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सत्तू के शरबत के बारे में उन्होंने कहा है, और इनको सुपर फूड भी सत्तू को कहा जाता है न्यूट्रिशन की दृष्टि से, और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है कोंकण और गोवा की शान कोकम शरबत और सोल कढ़ी, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है कि एसिडिटी कम करती है, और दक्षिण भारत के पारंपरिक ड्रिंक्स जैसे पानकम, नीरमोर, संभाराम, उड़ीसा का बेलपना, इन सब की भी बात उन्होंने की है, तो इनकी खासियत भी जानना चाहूंगी, इन सब के बारे में बताइए।
1: सबसे पहले बात करते हैं सत्तू की।
0: जी,
1: इसको हम एक्चुअली वे पाउडर से कंपेयर कर सकते हैं। ये इस प्रकार का सुपर फूड है कि इसकी कंपैरिजन वे पाउडर से की जा सकती है, जो कि 10 गुना महंगा है इससे, परंतु इसमें उसी प्रकार का कंपैरेटिव न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। जी, सत्तू भुने हुए चने को पाउडर करके बनाया जाता है, इसीलिए ये पल्स बेस्ड प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये घर पे ही बनता है या इसमें सिर्फ ग्राइंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये मिनिमली प्रोसेस कैटेगरी में आता है, और इसी कारण से इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स काफी मात्रा में रहते हैं, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ही एनर्जी रिलीज करते हैं,
0: तो काफी समय तक ऐसा लगता है कि आप
1: पेट भरा महसूस होता है, क्योंकि इनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिलीज ऑफ एनर्जी स्लो रहता है, तो ये स्थिर ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं लंबे समय तक, तो आप 4-5 घंटे आराम से टिक सकते हैं सत्तू के 2-3 चम्मच ड्रिंक बनाकर। और सत्तू का ड्रिंक बनाना आसान है, आप 3-2 चम्मच सत्तू लीजिए, पानी 1 गिलास के करीब डालिए, काला नमक डालिए, उसमें भुना जीरा, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, और चीनी, गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार से डाल सकते हैं, तो ये ड्रिंक अपने आप में 100 ग्राम सत्तू क्योंकि आपको 20 ग्राम प्रोटीन देता है, और इसमें फाइबर्स हैं, इसमें लीन प्लांट प्रोटीन्स है, तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, इसीलिए सत्तू को सुपर फूड कहा गया है, और इवन कॉलेज के बच्चे, जिम गोअर्स, स्पोर्ट्स पीपल, इन सभी लोगों के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए, वेट वॉचर्स के लिए, हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये बहुत ही कंप्लीट फूड है, तो सत्तू पेट भी भरता है और ताकत भी देता है।
0: जी, जी।
1: इसके बाद हम बात करते हैं कोकम की, जो गोवा और कोस्टल एरियाज में बनता है, क्योंकि उन इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, इसलिए कोकम वहाँ अवेलेबल रहता है। कोकम एक प्रकार का आप फंक्शनल फूड की कैटेगरी में हम इसको लिख सकते हैं, और फंक्शनल फूड वो फूड कैटेगरी है जो बियॉन्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, तो ये एक प्रकार का एक अपने आप में ही अनोखा एक फूड इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड इसका प्राइम इंग्रेडिएंट है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड तो आपको समर की इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता ही है, परंतु इसके अलावा इसका एक बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है गार्सिनॉल। गार्सिनॉल अपने आप में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है, ये पेट को ठंडा रखता है और पेट से जुड़ी हुई जो ये एसिडिटी और जलन की समस्याओं को कंट्रोल में करता है, और इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इतने पोटेंट है कि वो कई बार कंप्लीट बाकी विटामिन से काफी स्ट्रेंथ, इनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है जो कोकम शरबत में पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, और इट इज लोडेड विद कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, तो कोकम एक कंप्लीट फंक्शनल फूड है, और कोकम शरबत केवल गोवा या महाराष्ट्र में ही नहीं, हमें उत्तर भारत में भी हम इसको पी सकते हैं। सोल कड़ी और नीर मोर की भी बात करी है प्रधानमंत्री जी ने, नीर मोर दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है, और नीर मोर का यदि हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, नीर पानी को कहते हैं और मोर इज बटर मिल्क, तो पानी वाला बटर मिल्क, तो ये डाइल्यूटेड बटर मिल्क का ही फॉर्म है जो हम उत्तर भारत में लस्सी छाछ पीते हैं, नीर मोर उसी का ही एक पतला वर्जन है, इसमें काफी मात्रा में 3-4 गुना मात्रा में पानी डाला जाता है, और फिर इसमें हींग, अदरक जैसी, और पेपर, पुदीना, इस तरह का हरी मिर्च का भी तड़का लगाया जाता है, तो इस तरह से ये एक उनका छाछ है, ये भी प्रोबायोटिक ड्रिंक है, और क्योंकि इसमें अदरक, कड़ी पत्ता का तड़का लगता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी मात्रा में हमें हरी पत्तियों से आयरन भी मिला, अदरक डाइजेस्टिव होता है, तो ये क्योंकि हमारा अपच की समस्या गर्मियों में बढ़ती है, डाइजेशन थोड़ा धीमा पड़ता है गर्मियों में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव रखता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं सोल कढ़ी की। सोल कढ़ी भी एक प्रकार की प्रोबायोटिक बेस्ड एक रेसिपी है, और जिस जिस खाद्य पदार्थ में हम प्रोबायोटिक दही लस्सी जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें अपने आप में हमें एक्टिव बैक्टीरिया के बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे हम उसको कढ़ी के फॉर्म में खाएं, चाहे हम उसको लस्सी छाछ या हम उसको सांबरम के रूप में या नीर मोर के रूप में खाएं, इन सभी में जो जो मसाले पड़ रहे हैं, अगर जीरा पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा पोटेशियम दे रहा है, काला नमक पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा सोडियम दे रहा है, तो हम जो जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिला रहे हैं उस प्रकार से हमें कुछ कुछ कुछ कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते रहते हैं। तो ये जितने भी हम ट्रेडिशनल हर्ब्स स्पाइसेस और प्रोबायोटिक्स मिला के ड्रिंक्स बनाते हैं वो अपने आप में एडेड हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, गट माइक्रोबायोम को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इनके बहुत बेनिफिट्स हैं।
0: फिजिकल मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में तो खैर कहा जाता है कि आप बैठ जाते हो एक जगह, पर गर्मियों में भी हम देख रहे हैं क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है उसमें हम फोन मोबाइल टीवी इसके कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहां पर लाइफस्टाइल का काफी रोल बताया गया है और उसमें योग प्राणायाम और ध्यान इस पर भी काफी स्ट्रेस दिया गया है कि इससे भी तनाव कम होता है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उस पर कुछ बताएं। और कुछ ऐसे प्राणायाम भी होते हैं जो खास तौर पर गर्मियों में करने के लिए कहा जाता है?
2: जी शालिनी जी, सुबह अगर शीतली प्राणायाम करें या जब भी आपको गर्मी लग रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में शीतलता आती है, इस पर बहुत रिसर्च हुई हुई है कि ये शीतलता प्रोवाइड करता है। और अगर हम योगा जिम एक्सरसाइज जो भी हमें करना है वो हमें सुबह करना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बात करूं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेस एक्सरसाइजेज हम विंटर्स में एडवाइज करते हैं, समर्स में नहीं करते, बट क्योंकि आजकल के लोग सारा दिन भी कोई काम नहीं करते, ज़्यादातर लोग सेडेंट्री वर्कर हैं और नहीं भी हैं तो काम कम करते हैं, तो इसलिए सुबह एक्सरसाइज जरूर करें और उसके बाद ओवर एक्सर्ट ना करें, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करें और जितने भी योगा हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप करें ताकि गर्मी में आपको ना निकलना पड़े और आप आराम से उसके बाद नहा धो के बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सम्यक दिनचर्या में कह सकते हो।
0: तो इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम कि किस तरह से लाइफस्टाइल का रोल होता है, क्योंकि बहुत आजकल केसेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के।
3: देखिए लाइफस्टाइल का, रहन सहन का रोल तो हर चीज में है और बीमारी के बचाव में बहुत ज्यादा है। गर्मियों में तो बहुत जरूरी है कि आप अपना व्यायाम करें, लेकिन इसको ध्यान रखें कि व्यायाम आप ठंडे समय में करें, तो अर्ली मॉर्निंग करें जहां तक संभव हो, और दिन में तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर आपको शाम को कर सकते हैं तो फिर खाने के बाद या शाम को खाने से जस्ट पहले करें। खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जर्ट नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा व्यायाम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन खाने से जस्ट पहले कर सकते हैं, लेकिन वो भी एहतियात बरतनी पड़ेगी क्योंकि जब लू चल रही होती है तो रातें भी गर्म होती हैं और उस समय

0: बाहर जा करके आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन शरीर का चलना जरूरी है। जैसा कि आपने कहा कि बैठने से काम नहीं होता, सर्दियों में तो लोग बैठ जाते हैं, इन गर्मी ऐसा मौसम है जबकि आपको चलना चाहिए और व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पर ध्यान रखें कि जो लोग अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जो बच्चे हैं या बड़े हैं वयस्क लोग हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जब वो व्यायाम कर रहे हैं तो साथ में कुछ तरल पदार्थ वाला पानी रखें या पानी पीने के बाद व्यायाम करें या व्यायाम करने के बाद फौरन पानी लें, क्योंकि जब भी आप व्यायाम करेंगे तो थोड़ा पानी पसीना तो आप लूज करेंगे ही और पसीने के साथ तरल पदार्थ भी लूज करेंगे, तो उसको जो है शरीर में रिप्लेनिश करना, आपूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान दे करके व्यायाम करें। बहुत ज्यादा जिनमें एनर्जी लग रही है या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको ध्यान दे। ऐसे में जिन लोगों को बीमारी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की या दिल की, उनको जो है बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर से पूछ करके तभी व्यायाम करना चाहिए या कोई नया व्यायाम शुरू करना चाहिए।
1: जी चालीस जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें। समर्स में सबको अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा नैप जरूर लेना चाहिए आफ्टरनून में, उससे भी आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और आप बाकी रात तक आप काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है ग्रीष्म ऋतुचर्या में कि समर्स में हो सके तो थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए हमें।
2: और मोनी दीपा जी, हमने बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात की, पर एक ड्रिंक और है जो दक्षिण भारत में बहुत पॉपुलर है और पारंपरिक ड्रिंक्स में शामिल होती है, वो है पनकम। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
3: पनकम दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित ड्रिंक है और ये बहुत ही पतला रसम जैसा एक बेवरेज है। ये इसके तीन ही मेजर इंग्रेडिएंट्स है, इसमें गुड़ पड़ता है, इसमें पेपर पड़ता है और इसमें जिंजर, सूखा जिंजर जिसको सौंठ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कैलोरीज, क्योंकि ये बेसिकली वाटर बेस्ड ड्रिंक है तो इसमें कैलोरीज 100 से भी कम रहती है, तो काफी वेट वॉचर्स के लिए भी इस तरह का ड्रिंक फायदेमंद है और इसमें बाकी चीजों का भी कोई लोड नहीं है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये जैगरी बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ में आयरन रहता है और साथ में इसमें पेपरिका, पेपर का इस्तेमाल किया गया है, तो पेपरिका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में काफी मदद करता है। ये एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाता है उस न्यूट्रिएंट के साथ, तो पेपरिका पड़ा हुआ जैगरी तो उसमें से आयरन एब्जॉर्प्शन काफी बढ़िया रहता है, तो पेपरिका और गुड़ का ये बहुत ही साइंटिफिक कॉम्बिनेशन किया गया है। और पेपर का इसके अलावा भी एक रोल है, पेपर आपको गर्मियों में भी हमारे ब्रीदिंग कंजेशंस को ये रिलीफ करता है। ब्रीदिंग की समस्या आजकल पोल्यूशन के कारण गर्मियों में भी रहती है, तो पेपरिका, क्योंकि इस ड्रिंक में रहता है पेपर जिसे काली मिर्च कहते हैं, तो ये ब्रीदिंग रिलेटेड समर कंजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये ड्रिंक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चों को खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन की काफी समस्या रहती है, तो पानकम अपने आप में एक कंप्लीट लिक्विड वाटर बेस्ड ड्रिंक है, प्लस इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं।
2: जी, एक आध ड्रिंक्स और बच गई थी जो मैं चाहूंगी कि वो भी श्रोताओं तक पहुंचे। एक तो उन्होंने बताया था संभाराम और ओडिशा का बेलपन्ना।
3: जी, संभाराम एक प्रकार का पनकम का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की तरफ पनकम को ही संभाराम के रूप में का नाम दिया गया है। इसका बेसिक फॉर्म्यूलेशन पनकम जैसा ही है और कई लोग इसमें गुड़ ना डाल के मिश्री डालते हैं, पर मोर और लेस इसके मेजर थ्री इंग्रेडिएंट संभाराम और पनकम के सेम ही है। बेल शरबत उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है और बेल शरबत भी अपने आप में एक फंक्शनल फूड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बेल में पाए जाने वाले टैनिन्स जो हमें चाय से भी मिलते हैं, हमें कॉफी से भी मिलते हैं, बट बेल में पाए जाने वाले ये टैनिन हमारे डाइजेस्टिव स्लगिशनेस जो समर्स में आती है उसको रिलीफ करता है। ये डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों चीजों से ये टैनिन हमें सेव करता है और बेल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो विटामिन सी युक्त कोई भी बेवरेज आपकी समर इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, लू से बचाता है, और विटामिन सी बीइंग एंटीऑक्सीडेंट तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हमारे जो सेल्स में गर्मी की वजह से जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में डैमेज होता है उसको ये हील करता है। तो बेल रस अपने आप में बहुत ही एक थेरेप्यूटिक ड्रिंक जैसा है और ये भारत में आजकल उड़ीसा के अलावा बाकी कई क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है।
2: बिल्कुल, बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात हुई लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बीच में चाय कॉफी का जिक्र किया, तो मेरे जहन में ये सवाल आया, मैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश से करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ही कॉमन है और इंडिया में, और खासतौर पर अगर हम वर्किंग करें, वर्किंग भी नहीं घर में भी अगर हम रहते हैं तो बहुत ही इजीली, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, हम कहते हैं अरे चाय पी लो कॉफी पी लो, तो ये सही है कि नहीं? मतलब बाकी ड्रिंक्स की तो हम बात कर रहे हैं पर विच इज द मोस्ट कॉमन उसकी बात हमने नहीं की है, तो वो भी
0: देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लोग चाय कॉफी या जैसे कि पहले बात हुई कि बच्चे लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, कैफिनेटेड बीवरेजेस पीते रहते हैं, लोग ड्रिंक करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब नुकसानदेह हैं। ये सब हालांकि लिक्विड हैं, मतलब सब तरल पदार्थ है मतलब, लेकिन ये सब जो है ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें जो कैफीन होता है या टैनिन्स होते हैं ये थोड़ा डायरेसिस करते हैं, मतलब पेशाब बढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो आप पानी पीते हैं लेकिन इनमें जो तत्व होते हैं टैनिन्स या कैफीन या कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफिनेटेड बीवरेजेस होते हैं, तो वो जो है वो आपको यूरिन बढ़ाते हैं। तो ये लेने से आपका ना डिहाइड्रेशन करेक्ट होता है बल्कि नॉर्मल आदमी में भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गर्मियों में चाय या कॉफी जैसे पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर में पानी की कमी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
2: जी जी, तो गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर हमने बहुत सी आज यहाँ पर चर्चा की और इस चर्चा से स्पष्ट हुआ कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन शैली, उचित आहार, पर्याप्त जल सेवन और हमारे पारंपरिक भारतीय पेय जो हैं वो अगर हम नियमित उनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार स्थानीय और पारंपरिक खाद्य और पेय पदार्थों को अपनाने का आह्वान किया गया है, वो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है बल्कि स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हमारे सभी सम्मानित विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर आपने कार कराए हैं, विचार हमारे श्रोताओं तक साझा किए हैं। हमारे साथ, मैं बता दूं, इस चर्चा में शामिल रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में। हमारे साथ रही डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेद विशेषज्ञ और हमारे साथ थी मुनी दीपा तालुकदार, आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
2: और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पर्याप्त पानी पिएं और इस गर्मी में अपने पारंपरिक पेय पदार्थ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की से अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल है। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य में लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्मार्ट डिजिटल गाइड के रूप में NZP साथी ऐप लॉन्च किया और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाकर चिड़ियाघर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है, इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashwani, the news read by Harpreet Kaur. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defence and security, maritime trade and investment, pharma and healthcare, digital energy connectivity space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. Bharatiya Janata Party, BJP, has released another list of candidates for the Rajya Sabha polls. Party has fielded Mahesh Kewar from Madhya Pradesh and Dr. M. Nagaraja from Karnataka. Party has also announced that Lingaraj Patil and Raghu Kautilya are the candidates for Legislative Council election in Karnataka. West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agni Mitra Paul chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri yesterday. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Ms. Paul said, Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy, as well as generate employment opportunities. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of ABPMJAY in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं सुरभि, प्रोग्राम है गीत सुहाने। चलिए आगाज करते हैं गीत सुहाने का। बहुत खूब कहा है किसी ने कि आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया, आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया, सहते सहते हमको आखिर रंज सहना आ गया। सहल हो जाएगी मुश्किल जब सोजो सास की बातें होंगी, खूने दिल को आंख से जिस रोज बहना आ गया। मैं किसी से अपने दिल की बात कह सकता न था, अब सुखन की आड़ में क्या कुछ ना कहना आ गया, आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया, सहते सहते हमको आखिर रंज सहना आ गया। तो चलिए आगाज करते हैं श्री 420 फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश, रफ़ी और लता मंगेशकर और साथियों ने आवाज़ें दी हैं।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब कहा है किसी ने कि समझता हूँ मैं सब कुछ, सिर्फ समझाना नहीं आता। समझता हूँ मैं सब कुछ, सिर्फ समझाना नहीं आता। तड़पता हूँ मगर औरों को तड़पाना नहीं आता। मेरी जीत खुद एक मुस्तकिल तूफान है अख्तर, मुझे इन गम के तूफानों से घबराना नहीं आता। समझता हूँ मैं सब कुछ, सिर्फ समझाना नहीं आता। तड़पता हूँ मगर औरों को तड़पाना नहीं आता।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

गाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं दिल को चीर के रख दूं ये एक सूरत है, मैं दिल को चीर के रख दूं ये एक सूरत है, बयां तो हो ही नहीं सकती जो अपनी हालत है। मेरे सफीने को धारे पे डाल दे कोई, मैं डूब जाऊं कि तैर जाऊं मेरी किस्मत है। मैं दिल को चीर के रख दूं ये एक सूरत है, बयां तो हो ही नहीं सकती जो अपनी हालत है।

वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल गया था मुझे, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल गया था मुझे। मैं देखता था उसे, वो देखता था मुझे। मैं जानता हूँ कि बरसों से जानता था मुझे। तलाश कर न सका फिर मुझे वहाँ जाकर, गलत समझ के खो दिया उसने मुझे। वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल गया था मुझे। मैं देखता था उसे, वो देखता था मुझे।

तो इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा में श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि बढ़ती मांग के बावजूद नागालैंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। अनिर्बाध आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने बताया है कि पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार हैं। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defence and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. Bharatiya Janata Party, BJP, has released another list of candidates for the Rajya Sabha polls. Party has fielded Mahesh Kevat from Madhya Pradesh and Dr. M. Nagaraja from Karnataka. Party has also announced that Lingaraj Patil and Raghu Kautilya are the candidates for Legislative Council election in Karnataka. West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agni Mitra Paul chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri yesterday. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation, and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Ms. Paul said, Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy, as well as generate employment opportunities. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of ABPMJAY in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. A high-level delegation from the European Union will arrive in Guwahati, Assam today for a 2-day visit aimed at strengthening cooperation with India's northeastern states. According to the EU, discussions will focus on sectors where Europe and the Northeast share common interests, including renewable and green energy, sustainable urban infrastructure, healthcare and pharmaceuticals. The visit is part of efforts to

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। और चलिए आगाज़ करते हैं साजन फिल्म के इस गीत के साथ।

राज सुर में ही आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। मैं तो समझा था जिस वक्त मुझको वो मिलेंगे तो जन्नत मिलेगी, मैं तो समझा था जिस वक्त मुझको वो मिलेंगे तो जन्नत मिलेगी। क्या खबर थी राह आशिकी में, साथ उनके कयामत मिलेगी। मैंने तो सोचा था कि मुझे जन्नत मिलेगी।

0: अंदाज अपना अपना फिल्म का ही गीत अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में। और चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म है हम आपके हैं कौन।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए आप सुनवाते हैं आपको सैनिक फिल्म का गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में।

गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। एक लम्हे को तुम मिले थे मगर उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। और चलिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भूटान में आज देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी के नुकसान या जानमाल के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 9 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हमारे जीवन में साथ का बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में सजता है तो उस गीत की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है।

जी हाँ, जब प्यार इतना अनमोल हो, दोस्ती इतनी अनमोल हो, रिश्ता इतना अनमोल हो, तो याद क्यों ना रखा जाएगा। बिल्कुल, चाहे दो मिनट का साथ हो, जीवन भर का साथ हो, या थोड़ी देर का साथ हो, साथ अच्छा हो तो राहें जो हैं और भी आसान हो जाती हैं, खुशगवार हो जाती हैं, यादगार हो जाती हैं। जैसे कि इस समय हम और आप साथ साथ हैं हमराही कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले इस गीत के बारे में डिटेल आपको बताए देते हैं, फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था और आवाजों का जादू मोहम्मद रफी आशा भोसले का। और अब ये रचना क्या कह रही है, रात के रंगीन नजारों का जिक्र कर रही है।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। नौशाद का संगीत था, शकील बदायूनी की रचना, 1949 रिलीज, इस फिल्म का नाम दुलारी। कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। एक और ऐसा गीत जिसमें साथ का महत्व खुद ब खुद पता चल रहा है, पुकारा जा रहा है अपने मितवा को।

मन्ना डे और वाणी जयराम के सुंदर स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। जयदेव का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम परिणय, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में।

साथियों, रात का समा रोज एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। रात तो एक होती है, लेकिन चांद आसमां पर कभी आधा, कभी पूरा, कभी गायब भी होता है, और कभी काली घटा बरसात, इस तरह का मौसम रहता है। रात एक, लेकिन उसके रूप बिल्कुल अनेक होते हैं, और साथ ही एहसासात भी अलग अलग होते हैं रोज़।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजाइए की तभी आपने सुना जिगरी दोस्त फिल्म से 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, युगल गीतों से सजता है ये कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। समय हुआ है रात्रि के 3:34:17। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब दिल कुछ कह रहा है। किन का दिल कुछ कह रहा है सुनते हैं। दिल कह क्या रहा है, बड़ी अच्छी बात कह रहा है।

जी हाँ, दिल तो हमेशा अच्छी बातें ही कहता है, फिर भी दिल को इतना सुनने को मिलता है। दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है जी, दिल दीवाना, दिल मस्ताना, और ना जाने क्या क्या हमारे शरीर में। छोटा सा दिल हमारे पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को कहिए कि ये ही चलाता है, लेकिन फिर भी दिल को हम ना जाने क्या क्या कहते हैं। नन्ना सा दिल, प्यारा सा दिल, बहुत कुछ कहता रहता है। कई बार हम इस दिल की मानते हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं। जी हाँ, दिल और दिमाग के बीच ये जो विरोधाभास है, कई बार चलता रहता है। फिलहाल ये गीत आपने सुना, तलत महमूद आशा भोसले के स्वरों से सजा मेम साहेब, ये था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी 1956 में। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। साथियों, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है भाई, बीच बीच में बारिश, गर्मी का मौसम तो है ही, लेकिन कहीं कहीं बरसात हो जाती है, फुहारें बरस जाती हैं, तो तन और मन दोनों को ही प्रफुल्लित कर जाती हैं। अब यहाँ इस अगले गीत में क्या कहा जा रहा है, कुछ इसी तरह की बात है। आइए हम भी कुछ ठंडक ले लेते हैं इस गीत से, इस गर्मी भरे मौसम।

रोशन का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम चित्रलेखा जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

अब ऐसे गीतों को सुनकर के कौन दीवाना नहीं होगा। बिल्कुल, ये गीत ही ऐसे हैं, अपना रंग अपना जादू हम पर हमेशा हमेशा छोड़ते हैं। ओपेरा हाउस, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में। चित्रगुप्त का संगीत था, मुकेश लता मंगेशकर के स्वर थे और गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी। और अब जरा इधर भी चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये। कई बार नींद नहीं आती और हम कहते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही। नींद आने के ना आने के सबब तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों नहीं आ रही नींद। कई बार बेचैनी रहती है, कई बार तनाव रहता है, कई बार अगली सुबह अपने कामों को बिल्कुल पूरी तरह से हम चाहते हैं कि पूरे हो जाएं, जल्दी से उठ जाएं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इनका कारण क्या है, कोशिश करते हैं जानने की।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। प्यारे लाल संतोषी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पोस्ट बॉक्स 999, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1958 में। गिला भी तुमसे है, गिला भी तुमसे है बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुमसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह।

मोहम्मद रफी और आरती मुखर्जी के स्वरों से सजा ये गीत दो दिल फिल्म से था, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। हेमंत कुमार का संगीत था और कैफी आसमी की लिखी रचना थी। साथियों, जीवन में रूठना मनाना इसका सिलसिला भी कई बार चलता ही है। जी हाँ, कभी हम रूठ जाते हैं, कभी कोई रूठ जाता है, कभी कोई गलत फहमी की वजह से भी रूठ मनाई हो जाती है। लेकिन रूठना मनाना अपनी जगह है। रूठना मैं तो कहती हूँ कि कम ही चाहिए, और कोई रूठ जाए तो मनाने वाला भी होना चाहिए। रूठने का मज़ा तो तभी है ना जब कोई मनाने वाला हो। जब कोई मनाने वाला ही नहीं है तो रूठने का क्या लाभ है, बताइए। इसी तरह के खूबसूरत बानगी से सजा एक गीत आपको सुनवा रहे हैं।

साथियों, ये गीत आप सुन रहे हैं पार्श्व में लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों से सजा आस का पंछी। ये फिल्म का नाम 1961 रिलीज फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। ये थी आज के इस कार्यक्रम की यानी हमराही कार्यक्रम की अंतिम रचना। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए, मिलेंगे 4:10 पर अरुणिमा कार्यक्रम में, और इससे पहले आपको समाचार सुनवाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिवसीय जोन सेकंड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन हरियाणा विधानसभा कर रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भूटान में देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी इसके झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय पहलवानों ने मंगोलिया में चल रहे उलान बतार ओपन 2026 में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11:06। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना धरती फिल्म से। 1970 रिलीज ये फिल्म। शंकर जयकिशन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। और आइए इस सुबह को और भी खूबसूरत बनाए कुछ अच्छे नगमे सुनकर, सुनवा कर, गुनगुना कर, साथ गाकर।

सुमन कल्याणपुर की स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। मित्रों, जीवन का सफर और भी सुहावना तब हो उठता है जब जीवन साथ कहे ये बात। जी हाँ, क्या बात, क्या बात ऐसी हो सकती है जो कानों को सुंदर लगे और कानों को सुनने में बहुत ही एक सुकून का अनुभव हो और ऐसी बात रूह में उतर जाए। कौन सी बात हो सकती है, सोचिए सोचिए। गीत तो आपके बिल्कुल आ ही रहा है सामने सुनने के लिए, यानी कि कौन सी बात वो हो सकती है। तो ज़्यादा रहस्य ना बनाते हुए बताए देते हैं वो बात, ये वाली बात।

मुकेश के स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, इंदिवर की लिखी रचना, फिल्म का नाम सफर, जो रिलीज हुई थी 1970 में। आशा से भरा, उम्मीद से भरा एक गीत ये भी इस तरह का, आइए सुनते हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज से सजाइएगी। तभी आपने सुना सचिन देव बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना, फिल्म का नाम आराधना। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों,
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। मदन मोहन का संगीत था, इंदिवर की लिखी रचना, फिल्म का नाम छोटे बाबू, जो रिलीज हुई थी 1957 में। मित्रों, जो भी रिश्ता जुड़ता है उसमें कोई ना कोई पहली पहचान तो अवश्य ही होती है। जब पहली पहचान होगी तभी कोई रिश्ता जुड़ेगा, बनेगा, आगे तक चलेगा। कारण उस पहचान का जो भी हो, उसी पल भर की पहचान को बताता ये सुंदर गीत। आइए सुनते हैं।

0: पहचान।
1: मन्ना डे की आवाज से सजी अभी आपने ये गैर फिल्मी रचना सुनी, और अब इन गीतों को कौन भुला सकता है, कोई नहीं। इसी तरह का गीत ये सुंदर बानगी लिए आइए सुनते हैं।

बिल्कुल साथियों, ये गीत हमारी रूह में बसे हैं, कभी नहीं भुलाए जा सकते ये गीत। इन गीतों को बार बार बारंबार सुनने का जी चाहता है। पगला कहीं का इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। 1970 रिलीज फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज थी, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं। कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है इस समय अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी मित्र नीता अग्रवाल। प्रातः की 4:46 और 26 सेकेंड हो चुके हैं। ऐसे गीत सुनेंगे तो मुझे लगता है नींद अपने आप ही गायब हो जाती है, क्योंकि ऐसे गीतों को सुनने का जी चाहता है। इसी तरह का एक और गीत आशा उम्मीद से भरा आपको सुनवाते हैं।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों से सजा ये गीत अभी आपने सुना डॉक्टर विद्या फिल्म से। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, सचिन देव बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

दुनिया झुकती है इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से सजा। 1960 रिलीज ये फिल्म साथियों हेमंत कुमार का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की रचना। और अब ये सुंदर गीत सुनते हैं, बड़ा ही सुंदर एहसास कराता ये खुशनुमा गीत है।

मन्ना जी, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत राहगीर फिल्म से अभी आपने सुना। 1969 रिलीज ये फिल्म गुलजार की लिखी रचना थी, हेमंत कुमार का संगीत। और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आशा उम्मीद का दामन थामे ये रचना।

कार्यक्रम अरुणिमा की अंतिम रचना आप सुन रहे हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में। तेरे मेरे सपने इस फिल्म से 1971 रिलीज है फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत, नीरज की लिखी रचना। इसी गीत रचना के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे 5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ, और इससे पहले आपको समाचार भी सुनवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो की ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित है। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 5:11 और 11 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, जब तक जीना तब तक सीखना। साथियों, ये विचार अनमोल है, इसे जीवन में अवश्य उतारें। सीखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता साथियों। और यहाँ ये क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, आइए सुनते हैं।
1: आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, सुनोगे ना? मेरे साथ सब मिलकर चुटकी बजाओ और

मित्रों समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। भोर से दोपहर, दोपहर से शाम और रैना काल और फिर एक नव अरुणिमा का उदय लेकर भोर सुहानी आती है। पता ही नहीं चलता वक्त का समय कैसे पंख लगाकर गुजर जाता है।

गीत आदत और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत बाजी फिल्म से अभी आपने सुना। 1951 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना।